0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
2: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
3: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, on Saturday.
2: The show that sets the prime time agenda.
3: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
2: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
4: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
5: You're watching NDTV 24/7.
6: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
7: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig.
6: Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
4: When stories have impact.
8: Padmasar Joshi, managing editor and prime time anchor.
4: The news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
6: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding. And I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
9: आज का अगर हमारा भारत का हार हो कि अगर इतने कष्ट इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में अपने युवाओं में अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
10: And now switching tracks to the controversy over the independent MP Pappu Yadav's parliament skit on Chanda Chori that has intensified with multiple complaints, NFR and protests. A complaint has been filed in Delhi by BJP MP Basuri Swaraj, and also an NFR has been filed in Varanasi over the same skit. Vishwa Hindu Parishad strongly has condemned the skit, accusing the opposition of mocking a sacred national cause. Protests have erupted in multiple states. The VHP workers have also staged demonstrations and burnt his effigies. Now, there is Pappu Yadav who has hit back, saying that a person who is protecting Sanatan is being targeted, and said that he will do their hundreds of times to save. This is what he can go on doing again and again in order to save Sanatan. Meanwhile, Hyderabad Congress has replicated the same skit over Chanda Chori, and that happened yesterday.
11: और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है। मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। चोर को जो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे। जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे। जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता।
12: जिन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया, वो वहाँ पैसे डालने के लिए इकट्ठा होते। और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को

0: Hero will go from strength to strength.
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है
2: पेट्सी डॉग सर, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?

0: एक्चुअली मेरा लास्ट के 2024 थोड़ा अच्छा नहीं था क्योंकि मैं पेरिस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और 2025 में मेरा सर्जरी हुआ, तो मैं हंगर था कि आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड प्ले कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स एंड ऑल द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वेयर आई गेट द चांस टू प्ले माई नेशनल एंथम इन माई वेट कैटेगरी. सो दे ऑल आर जस्ट कमिंग आउट एंड इवन आई वॉज जस्ट रिमेंबरिंग दैट इन 2016 आई जस्ट टोल्ड माई डैड दैट डैड प्लीज अलाउ मी टू प्ले बॉक्सिंग because in a year there are so many IITians comes out but Olympic medal is very rare. So yeah,
1: aap Rajasthan se ho, IIT ke baad kis kota IIT ka ekdam bahut hi acha relation hai. Aapki journey ke bare mein bataiye ki kya hardship aapko face karna padta hai.
0: डिफ़िकल्ट तो था बिकॉज कोटा में बॉक्सिंग एकेडमी मिलना थोड़ा ऐसा था हम लोगों के लिए और फादर भी बहुत चाहते थे कि मैं बस IIT करूँ बिकॉज दे थॉट कि मैं थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा हूँ उनका, बट मैं तो श्योर थी कि मुझे नहीं करनी IIT, मुझे तो गेम ही खेलना है. स्टार्टिंग में बास्केटबॉल खेलती थी, फिर फादर को मेरा पोटेंशियल पता था कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊँगी मैं बेस्ट करूँगी, तो ही टोल्ड मी कि ओके तुम्हें गेम करना है सो गो चूज अ गेम वे यू कैन परफॉर्म सोलो. सो आई चूज बॉक्सिंग एंड बिकॉज ऑफ हिज गाइडेंस ओनली आई चूज द बॉक्सिंग. एंड उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया अकेडमीज ढूंढने के लिए और जो मेरे बॉक्सिंग के बेसिक कोच हैं उन्होंने यूट्यूब से मेरे लिए बॉक्सिंग सीखा बिकॉज वो भी प्रॉपर बॉक्सिंग के कोच नहीं थे, बट पहले उन्होंने खुद ने सीखा फिर मुझे सिखाया और आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं राजस्थान इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. अभी जैसे ही फाइनल हुआ मैंने जाते ही पापा को कॉल किया तो वो बोले कि मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे ऐसी बेटी मिली जिसने ना कि कोटा राजस्थान इंडिया नहीं उसने पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया है.
1: लास्ट टू क्वेश्चन, राजस्थान में काफ़ी सारे स्वादिष्ट खाने होते हैं, हाउ वुड यू वांट टू गो बैक एंड एंजॉय?
0: हाँ, सबसे पहले यही है कि जल्दी जल्दी फ्लाइट इंडिया लैंड हो और मैं जाके दाल बाटी खाऊँ बिकॉज मैं बहुत टाइम से उसको मिस कर रही हूँ.
1: जी
0: थैंक यू.
2: ये सब ये कोचिज का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट और हमारे कंट्री इंडिया इस सभी की वजह से आज मैं सीनियर में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल आया.
1: फाइनल के बारे में बताइए कि कमबैक भी करना पड़ा, क्राउड सपोर्ट काफ़ी था, तो फाइनल का कैसे चल रहा था?
2: हाँ जी, मैंने मेरी जो तीन बाउट हुई हैं तीनों बाउटों में मैंने कमबैक किया है, तो मुझे जैसे फर्स्ट अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे अगर फर्स्ट राउंड स्प्लिट में चला जाता है तो कूल माइंड से रह के मेंटलिटी के ऊपर भी काम करते हैं हम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने कमबैक कर लिया था आराम से.
1: बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, फिजिकल स्पोर्ट है, बट मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप कैसे देखते हैं?
2: जैसे जब हम बॉक्सिंग की शुरुआत करते हैं तो फिजिकली होना पड़ता है, लेकिन जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है तो उस समय फिजिकल की जगह मेंटलिटी बहुत ज़्यादा काम आती है, तो मैं यही कहना चाहूँगी बॉक्सर को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए.
1: आज की क्राउड सपोर्ट के बारे में बताइए कैसा है?
2: क्राउड सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा था, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं.
1: कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे?
2: ये मेडल पूरे कंट्री को देना चाहती हूँ और सभी आइए और सेलिब्रेट कीजिए.
3: अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. इस उम्मीद से आए थे गोल्ड लेके आना, लेकिन हमें विश्वास था सभी को, हालांकि कुछ बॉक्सर हमारे थोड़े एक कुछ उससे रह गए, लेकिन अगले आने वाले एशियन गेम में हमारे से ज़्यादा मेडल आएंगे हमें विश्वास है. जाते ही एशियन गेम के लिए हमें कैंप लगेगा तो वहाँ पे जाना है. पहले मेडल अपने माँ बाप, चाचा, कोच और सभी अपने दोस्तों को, इंडिया को.
4: ये सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी है, ये सबसे बड़ी जीत है कि इंडिया जीतना चाहिए. मैं मेडल लूँ या ना लूँ ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, कि इंडिया मेडल ले रहा है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और खेलूँ, अपने देश के लिए मेडल लाऊँ. मैं मोटिवेट होती हूँ मेरे जूनियर से, वो लोग इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मुझे भी और ज़्यादा हार्डवर्क करना है, मुझे अपने देश के लिए और मेडल लाना है. मैं ये मेडल हमारे जो फ्लड में बहुत सारे लोगों को जान गया है उन लोगों को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ.
5: अभी तो अच्छा लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के, लेकिन बाउट में थोड़ा मनोबल हो गया था कि पहला राउंड 5-0 डाउन हो गया था, तो थोड़ा प्रेशर आ गया था, तो ये था कि बाउट जीतनी है कैसे भी कैसे करके. और बाकी जो सपोर्ट करने आए थे उनका भी धन्यवाद, उनके लिए मेडल जीता है.
6: थोड़ा चूक गए हैं और ये कमी मैं एशियन गेम में पूरी करने की कोशिश करूँगा. मैंने अपना बेस्ट दिया था और इंग्लैंड के और मेरे की फाइट खींची है और थोड़ी चुप रह गई है, ये मैं

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
2: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
3: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: श्रीनगर तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
4: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
2: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है?
3: कौन?
2: बच्चे हैं?
3: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: श्रीनगर तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
4: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,

0: Well, switching tracks to the Commonwealth Games, and India's boxing contingent has delivered a historic knockout performance. We're talking about 10 Indian boxers stepping into the finals, and they returned with an incredible 7 gold and 3 silver medals, making it India's most successful ever boxing campaign at the Commonwealth Games. Gold medals came through Preeti Pawar as well as Sakshi Chaudhary and Ankush Pangal, Sachin Sivash and also Nikhat Zareen. There were many, in fact, who have won, so 10 in all. From clinical dominance to gritty comeback wins, India's boxers own the ring, delivering one of the biggest highlights at the Games in Scotland and powering the nation's medal charge in spectacular fashion.
1: 7 gold medals, 3 silver medals, 10 finalists. That's India's final report card from boxing at the Commonwealth Games 2026. And quite simply, this is the greatest boxing campaign the country has ever produced at the Games. This campaign will always be remembered for something that's much, much bigger than individual medals. India won its first Commonwealth Games gold medal in boxing back in 2002, 24 years later, after years of federation troubles and administrative uncertainty, Indian boxing has produced its greatest, its best ever Commonwealth Games performance. Saturday produced 7 Commonwealth Games champions from boxing and one unforgettable outing, perhaps the clearest sign yet that Indian boxing is back where it belongs, among the world's best.
2: How does it feel to be a part of this?
3: I'm feeling very good, even proud also, because the sacrifice of all athletes' family, they are showing their result here only. Even our federation did very much for us, ISAI, TOPS, Khelo India. So I just want to say thanks to them, because all of their hard work, the result is here. Actually, मेरा last के 2024 थोड़ा अच्छा नहीं था क्योंकि मैं पेरिस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और 2025 में मेरा सर्जरी हुआ तो मैं हंगर था कि आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड प्ले कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स एंड ऑल द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वेयर आई गेट द चांस टू प्ले माई नेशनल एंथम इन माई वेट कैटेगरी.
4: Yes, we coach is का sport, family का sport और हमारे country India इस सभी की वजह से आज मैं senior में Commonwealth Games में gold medal आया.
2: Final के बारे में बताइए कि comeback भी करना पड़ा, crowd support काफी था, final का कैसे चल रहा था?
4: हाँ जी, मैंने मेरी जो 3 fight bout हुई हैं, तीनों बाउटों में मैंने comeback किया है, तो मुझे जैसे first अभी तो बहुत ज़्यादा experience हो रहा है, जैसे अगर first round split में चला जाता है तो कूल माइंड से रह के मेंटेलिटी के ऊपर भी काम करते हैं हम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने कम बैक कर लिया था आराम से.
5: अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. इस उम्मीद से आए थे गोल्ड लेके आना, लेकिन हमें विश्वास था सभी को, हालांकि कुछ बॉक्सर हमारे थोड़े कुछ उससे रह गए, लेकिन अगले आने वाले एशियन गेम में हमारे से ज़्यादा मेडल आएंगे, हमें विश्वास है. जाते ही एशियन गेम के लिए हमें कैंप लगेगा, तो वहाँ पे जाना है पहले. मेडल अपने माँ बाप, चाचा, कोच और सभी अपने दोस्तों को, इंडिया को.
6: सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी है, ये सबसे बड़ी जीत है कि इंडिया जीतना चाहिए. मैं मेडल लूँ या ना लूँ ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, कि इंडिया मेडल ले रहा है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और खेलूँ, अपने देश के लिए मेडल लाऊँ. मैं मोटिवेट होती हूँ मेरे जूनियर से, वो लोग इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मुझे भी और ज़्यादा हार्डवर्क करना है, मुझे अपने देश के लिए और मेडल लाना है. मैं ये मेडल हमारे जो फ्लड में बहुत सारे लोगों को जान गया है, उन लोगों को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ.
7: अभी तो अच्छा लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के, लेकिन बाउट में थोड़ा मनोबल हो गया था कि पहला राउंड 5-0 डाउन हो गया था, तो थोड़ा प्रेशर आ गया था. तो ये था कि बाउट जीतनी है कैसे भी कैसे करके, और बाकी जो सपोर्ट करने आए थे उनका भी धन्यवाद, उनके लिए मेडल जीता है.
8: थोड़ा चूक गए हैं और ये कमी मैं एशियन गेम में पूरी करने की कोशिश करूँगा. मैंने अपना बेस्ट दिया था और इंग्लैंड के और मेरे की फाइट खींची है, और थोड़ी चूक रह गई है, ये मैं एशियन गेम में पूरा करूँगा.
9: ओपोनेंट काफी टफ लग रहा है, फाइट अभी काफी टफ।
8: हाँ, ये साउथ पा था और जो ओपोनेंट थे अपने ऑर्थोडॉक्स थे, तो साउथ पा के साथ इतना हम खेलते नहीं है, तो जो प्लानिंग की थी वो मतलब पूरी हुई थी, मतलब पूरी टफ बाउट चली थी और अच्छा लगा मेरे को खेल के, मैंने अपना बेस्ट दिया है।
10: It's a proud moment for our country and it's a proud moment for every Indians. And every boxers goes and getting the gold medal and Janagana Mana comes. It's a, you cannot say in a one word. It is an exciting, it's a proud moment for us. I'm so happy that they have, we had 38 medals and out of that 13 gold medal and 17 silver and then 38 medals. And this is very limited events here it is happened, you know, 10 events only. But our major events is outside. So maybe in the 2030 maybe we'll come down again. And this is a very, very big achievement and great achievement from our athletes.
11: So if there's one man who must be chuffed, it's Ajay Singh, president of BFI, 7 gold medals and 6 all other sports combined. 13 in all, Ajay Singh's sport has contributed 7 and catapulted India to the 4th position. You must be over the moon.
12: We are absolutely delighted. And we are delighted that we were able to contribute to the country's kitty. I think one other really important thing for us is that with 7 golds and 3 silvers, this is the highest ever medal haul by any country in Commonwealth Games history.
11: Let's repeat this. 7 golds and 3 silvers, highest ever medal haul by any country in the history of the Commonwealth Games, and we are talking 1930 to 2026. Now that's incredible.
12: Incredible, incredible, and kudos to all our wonderful young players who played with such grit and determination.
0: And with that, it's a wrap on this edition. News and updates for country on the other side. Coming up next is Fourth Line with my colleague Gauri Dwivedi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
2: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
3: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: श्रीनगर तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
6: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: ज़्यादा से ज़्यादा बहुत पानी भी इधर बहुत भरा रहा है और निकलना भी कुछ मुश्किल होता है इधर।
1: निकलना मुश्किल होता है। खाना पीना कैसे खाते हैं, पानी कहाँ से लाते हैं?
0: पानी, ओ मेरी बहन काम करने जा रही है उधर ही थी, कुछ उसकी मुका उधर से ही खाना कुछ लाती है मेरी बहन।
1: आपका क्या नाम है?
0: दीपिशा।
1: दीपिशा, ये बताइए कितना मुश्किल होता है यहाँ पर ज़िंदगी सरवाइव करना?
0: बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादा ही मुश्किल है।
1: दिस इज़ वेयर विराल एंड हिज फैमिली लिव एट दिस वेरी फ्लैट। आई एम गोइंग टू गेट इनसाइड टू ब्रिंग यू द रियल स्टोरी ऑफ दिस वेरी फ्लैट। विराल, अच्छा मुझे बताइए, ये जो कमरा है ये मम्मी पापा का कमरा है, ये इसका भी गेट टूटा हुआ है और ये कमरा आपका है ना? आगे की तरफ आ सकता हूँ क्या? आप मुझे कमरा दिखाएंगे? I would like to request my Vijay to move forward and show you the inside visual of this very flat where Viral lives. Viral, ये जो है इस कमरे में दिखाएं मुझे, कोई भी चीज़ जो है अपनी जगह पे मुझे नहीं दिख रही है। गेट जो है वो टूटा हुआ है, बेड जो है वो टूटा हुआ है। ये बेड आपका है और वो बहन का है ना? दोनों लोग यहाँ पे रहते हैं और इसी कमरे के अंदर आपका किचन भी है ना? कितना मुश्किल होता है यहाँ पे, कैसे रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे?
0: बहुत कुछ मुश्किल होता है, रहना ही पड़ता है,
1: रहना पड़ता है।
0: हाँ।
1: कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको तो भगवान से बहुत शिकायतें होंगी।
0: हाँ।
1: क्या शिकायत करते हैं आप जब अकेले में बैठते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं?
0: भगवान को ऐसा कह रहे हैं कि पानी मत आने देना,
1: पानी नहीं आने देना।
0: हाँ।
1: तकलीफ होती होगी आपको, दूसरे बच्चों को देखते होंगे तो।
0: हाँ।
1: जिला प्रशासन से कोई आह्वान, कुछ कहना चाहते हो? गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हो?
0: कुछ कहना नहीं चाहता।
1: क्यों, आपको उम्मीद नहीं है प्रशासन से, सरकार से? क्या हुआ, रोने लगे आप? अरे यू आर अ वेरी स्ट्रांग बॉय, क्या हुआ, आंसू आ गया आपकी आंखों से, क्या हो गया? आपको उम्मीद नहीं है, लोगों से उम्मीद नहीं है, सरकार से उम्मीद नहीं है कि कुछ कर देगी, कुछ भला हो जाएगा आपकी जिंदगी में, घर मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा?
0: सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि मेरा घर बना देना।
1: आप बड़े होके इंजीनियर बनना चाहते हो? मत रो, यू वेरी स्ट्रांग बॉय, नहीं रोते हैं, ठीक है? आप एक दिन बहुत, आप देखो आपके घर में मैं अभी आया हूँ तो मुझे नज़र पड़ी है, यहाँ पे मेडल्स भी हैं, ये आपके मेडल्स हैं?
0: हाँ।
1: तो आप मेहनती बच्चे हो, इसका मतलब इसलिए आपको मिले हैं ये मेडल्स, है ना?
0: हाँ।
1: तो आपको किसी की मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से मेहनत करके आगे बढ़ेंगे और कामयाब हो जाएंगे।
0: हाँ,
1: है ना? आपको भरोसा है खुद पे? राइट नाउ आई एम एट कस्बा विलेज, दिस इज वन ऑफ द विलेजेस ऑफ नौसारी डिस्ट्रिक्ट एंड दिस वेरी रोड कनेक्ट्स नौसारी टू सूरत। राइट नाउ यू कैन सी द विजुअल्स ओवर हियर, द वाटर करंट कैन बी सीन and the impact and the magnitude of the water can also be seen. Right now you can see from this very side, from the side of Nawsari, a tractor is just moving towards the side of Surat. The entire road has been blocked, the entire road has been choked, and what we have got to learn from the locals present over here that at this stage it's very difficult to cross this terrain. I'm going to speak to this tractor driver over here, and right now you can see the impact of this waterway. This has become a waterway. I'm going to request this very individual. कहाँ जा रहे हैं आप इसका? कहाँ जा रहे हैं?
2: वो छोड़ने गए थे साफ करने के लिए।
1: लोगों को छोड़ने के लिए गए थे? पूरा रास्ता बंद पड़ा हुआ है। सुनिए,
2: छोड़ने के लिए गए थे ये सामने ये वाला।
1: So right now you can see the impact of the water over here on this very road, which has been completely blocked. This is state highway which touches from the Nawsari side towards Surat side is right now has been completely stopped for regular traffic movement, regular vehicular movement at this point in time. So the nearby region and some of the villages in this very region have been deeply impacted due to the flood situation at ground zero. This video journalist Pawan Akil for NDTV 24/7. You can see the visual over here, the water current can be easily seen. Right now I have rented a tractor to show you, to bring you the reality of the ground zero situation in which what we are witnessing, that not only Nawsari district, apart from Nawsari district if you see Surat, Dang, Valsad, several districts across southern Gujarat have been badly impacted, and you can see the impact of the water over here. The water current level is so intense at this stage. What we are witnessing that not only this very village, apart from that there are 24 to 25 villages which have got badly impacted, and due to which what we are witnessing that there's a scarcity of food, drinking water, and people are facing a lot of difficulties. Over here you can see this river is known as Purna village, and across the bed of this river we are witnessing the heavy flooding across the bed of this very river, so which basically brings everything to a halt at this stage, and these people are facing a lot of difficulties. Amid the ongoing flood situation in Gujarat, what we have been witnessing that over 13 districts have been put under red alert. There are 7 districts which have been put under orange alert. Right now, you can see the visuals behind me. These are the people who have been brought in over here. They have been migrated from a low-lying area. And right now, I'm going to get some voices over here. Kya naam hai aap logon ka? Kya naam hai aapka?
3: Nepal Mandal hai.
1: Nepal Mandal ji, kahan ke rehne wale hain aap?
3: Bihar, Kathiyar district ka.
1: Kathiyar ke rehne wale hain. Surat pe kya kar rahe hain yahan par aap?
3: स्टील का काम कर रहे हैं, सरिया का।
1: आप सभी लोग जो हैं वो स्टील की कंपनी में काम करते हैं।
4: सरिया लाइन का,
1: सरिया लाइन का काम।
4: हाँ,
1: कितनी परेशानी हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है बाढ़ के पानी के वजह से?
3: परेशानी तो बहुत दिक्कत हो रहा है सर, इतना बोलिए तो यानी कि बहुत दिक्कत, परेशानी तो बहुत है।
1: खाना पीना कैसे हो रहा है?
3: खाना पीना
1: तो जल रहा है, नहीं जल रहा है?
3: चूल्हा नहीं जल रहा है, चूल्हा कहाँ जल रहा है साहब? 3 बार तो यहाँ से यानी कि हम लोगों को पानी से भगा ही जा रहा है, तो गरीब आदमी और इतना जो है कि यानी कि कम से कम मुआवजा दिलाइए हम लोगों को, इतना 3-3 बार
1: मुआवजे मिले, कुछ पैसे से मिले या नहीं मिले?
3: नहीं मिले, एक भी पैसा नहीं मिले हैं हम लोगों को।
1: तो ये बताइए, कटिहार के रहने वाले हैं आप लोग, ज़्यादातर घर पैसा भेज पा रहे हैं बीवी बच्चों
4: का? वो सब कुछ नहीं मिलता है, वो सैलरी कुछ नहीं यहाँ पर मिलता है अभी मुआवजा।
1: पूरा जुलाई का महीना निकल गया है, आज अगस्त की 1 तारीख हो गई है, तो तनख्वाह नहीं मिली इस महीने?
4: इसमें नहीं, काम करेंगे तो मिलेगा ना, काम होगा तब देगा ना।
3: तनख्वाह पे नहीं है, हम लोग डेली का काम करते, डेली ये पैसा होता, लेकिन जो हम लोग ये महीना पूरा ही बर्बाद हो गया।
1: Here you can see these are the miners and I'm going to get some female voices as well. क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम पिंकी गुप्ता है। हम लोग
1: कहाँ के रहने वाली हैं?
5: हम रहने वाले पडरौना के हैं, जिला कुशीनगर।
1: श्रीनगर की रहने वाली हैं। कितनी दिक्कत हो रही है बच्चों को लेकर के यहाँ पर?
5: हम लोगों को तो बहुत दिक्कत हो रही है, उतना दूर से हम लोग कमाने के लिए आए हैं, पर बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है।
1: Hey, you can see these are the children and young men as well who are unemployed at this stage, and they have been working in some of the factories, and what we have got to learn that at this stage they are jobless and they have got no work, and for the last 20 to 30 days they have been completely unemployed. Right now we are at the Triveni Sangam. This is
6: right now we are at the Triveni Sangam.
1: This is the trisectional point where merge into the Arabian Sea. Behind me you can see the visuals over here where Kharera River, apart from that Ambika River and Kaveri River, all these three rivers submerged into one, and then it basically meet into the Arabian Sea. You can see the visuals over here, which is very aggressive. Right now the entire span in the entire area has been completely flooded. यहाँ से आप लोग लोगों को जो है स्थानांतरित कर रहे हैं, जो लोग रिवर बेड के इलाके में रहते हैं उनको दूर लेकर के जा रहे हैं, ऊंची जगहों पर लेकर,
7: ऊंची जगह पर लेके जा रहे हैं।
1: कितने लोगों को लेकर गए?
7: 250 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित कर दिया है,
1: उनको सेफ लोकेशन पर
7: भेज दिया। अभी
1: यहाँ पर तकरीबन कितनी आबादी रहती है?
7: बहुत ज्यादा है, 45,000 आबादी है बिल्लीमोरा नगर पालिका की।
1: IMD का जो अलर्ट है, रेड अलर्ट, वो जारी है 34 जिलों में से, तकरीबन 13 जिले ऐसे हैं जहां पर जो है रेड अलर्ट है, और 7 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है। कितने लोगों को सुरक्षित स्थान पर अब तक जो है नौसारी के अंदर ले जाया जा चुका?
8: अब तक ये दूसरी बार ये नौसारी डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आई हुई है, और अब तक जो स्थानांतरित किए हुए की बात की जाए तो अभी तक 9,000 से ज़्यादा लोगों को प्रशासन की ओर से स्थानांतरित किया गया हुआ है। उनके लिए फूड पैकेट की भी प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। हालांकि ये बिल्लीमोरा के जो सटे हुए जो इलाके हैं, जो निचले क्षेत्र है, वहाँ के 4 से 5 गाँव है जो ये नदी में बाढ़ के कारण वो संपर्क उनका टूट चुका है।
9: Now, amid the Gen Z movement in the country, it's Prime Minister Modi who has once again underlined the importance of constructive youth engagement. He has said that the young population is the country's greatest strength and stresses that the youth must receive the right guidance to realize their full potential. Echoing a similar message was the National Security Advisor urging young people not to confuse freedom with liberty. He said that freedom carries responsibility and encouraged the youth to reflect on their role in nation building, place national interests above personal interests. Let's listen in.
10: आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है. किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से. आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से. आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है. किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से. आज भारत से बने डिजिटल सॉल्यूशंस दुनिया के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं. किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से. आज भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की नई यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. किसकी वजह से? भारत के युवा के सामर्थ्य से. आज भारत एआई, डीपटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए अध्याय लिख रहा है. किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से. अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है. पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है. आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है. हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है.
11: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था. जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है. स्वतंत्रता ये नहीं थी. आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो, कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है, तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा. मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा. इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा.
9: In other news, even as the centre is now preparing to table the delimitation bill towards the end of the monsoon session, the political battle is only intensifying. Rahul Gandhi has opposed the proposed legislation, but the key question remains, will the DMK be backing Rahul Gandhi's position or align with the Congress party's broader stand? The leader of opposition has alleged that the bill would disenfranchise people and strip Tamil Nadu of its political influence, calling it a conspiracy against the state. On the other hand, we have the DMK that's maintained that it is not opposed to delimitation in principle, but wants to safeguard, as far as safeguards are concerned, those need to be in place before extending its support. The party has made it very clear that it will oppose any proposal that reduces the Lok Sabha seat share when it comes to the state of Tamil Nadu. However, if the centre provides adequate safeguards, those safeguards need to be provided in advance. The DMK has indicated that it could support the bill.
12: There is an attempt by the BJP to do delimitation. Delimitation is designed to disenfranchise, to take away power from the people of Tamil Nadu. This is a BJP conspiracy. Anybody who supports delimitation is betraying Tamil Nadu, is betraying the future of Tamil Nadu, is allowing the RSS and BJP to attack

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
4: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV Newsroom, weekdays at 4 PM.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
5: अरे मेरे राजा।
7: What seems settled for me is un.

0: उनको सेफ लोकेशन पे पहुंचा, सेफ लोकेशन
1: में भेज दिया। अभी
0: यहाँ पर तकरीबन कितनी आबादी रहती है?
1: बहुत ज्यादा है, 45,000 आबादी है बिल्लीमोरा नगर पालिका की।
0: आईएमडी का जो अलर्ट है, रेड अलर्ट, वो जारी है। 34 जिलों में से तकरीबन 13 जिले ऐसे हैं जहां पर जो है रेड अलर्ट है, और 7 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है। कितने लोगों को सुरक्षित स्थान पर अब तक जो है नौसारी के अंदर ले जाया जा चुका है?
2: अब तक ये दूसरी बार ये नौसारी डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आई हुई है, और अब तक जो स्थानांतरित किए हुए की बात की जाए तो अभी तक 9,000 से ज़्यादा लोगों को प्रशासन की ओर से स्थानांतरित किया गया हुआ है। उनके लिए फूड पैकेट की भी प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। हालांकि ये बिल्लीमोरा के जो सटे हुए जो इलाके हैं, जो निचले क्षेत्र है, वहाँ के 4 से 5 गाँव है जो ये नदी में बाढ़ के कारण वो संपर्क उनका टूट चुका है।
3: All right, news from the Commonwealth Games that came to a close on the 2nd of August. And despite what the final medal table may suggest, this could well be India's finest ever Commonwealth Games campaign on foreign soil. The numbers don't tell the full story. They can't when the games themselves were dramatically reduced. India competed in just 8 medal events. In Glasgow, nearly 30 medal opportunities disappeared with the stripped down program. This wasn't just about medals lost, it was about opportunities that were never given. India still delivered a standout performances across the board, which is why fans will inevitably be left asking one question: what if this hadn't been a shrunken Commonwealth Games? Because with a full program, India may well have been celebrating a place in the top 3.
4: India heads into the final day with 39 medals, after a gold rush from the boxers on the penultimate day of the competition. That's a sharp drop from the 61 medals won at the Birmingham Games 4 years ago. The biggest reason isn't a collapse in performance, it's a drastically reduced sporting program. In Birmingham, India won medals across 12 different sports. In Glasgow, that number has been cut to just 5 competitive disciplines, with para events adding another medal stream. 6 of India's strongest medal-producing sports were dropped altogether. That effectively shut the door on nearly 30 medals that India had won in the previous edition. Had those events remained on the program, and had India produced similar results, the medal tally would have looked very different. It could even have brought Canada, currently third on the medal table, within reach. 12 events powered India to 61 medals in Birmingham. In Glasgow, several traditional medal events disappeared from the schedule. Sports like wrestling, badminton, table tennis, squash, hockey, cricket simply weren't there for India to compete in. That's where the medal gap was. 6 events that were dropped from the program accounted for 30 of India's medals in Birmingham. Those missing events changed the complexion of the medal table. The race for the third became far steeper before the competition even began. And that's why comparing raw medal totals across the two Commonwealth Games doesn't tell the full story. India's most successful campaign remains Delhi 2010, where the host nation finished with a record 101 medals. Glasgow 2026 has delivered new champions, breakthrough performances and memorable moments. But it has also highlighted how much the shape of the Games program can influence the final medal standings. But it has also highlighted how much the shape of the Games program can influence the final medal standings. Rika Roy for NDTV.
3: Now, India's boxing contingent has delivered a historic knockout performance at the Commonwealth Games. 10 Indian boxers stepped into the finals and they returned with an incredible 7 gold, 3 silver medals, making it India's most successful ever boxing campaign at the Games. Gold medals came through Preeti Pawar, Sakshi Chaudhary, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary, Ankush Apangal, Sachin Sivach and Nick Hazarin, while Lavlina Borgohain and Jadumani Singh, as well as Narendra Berwal, settled for a silver after a hard-fought final. So let's listen in to the reactions of the athletes after they won the medal.
5: How would you describe, how would you sum up this entire This was my first Commonwealth Games and I won the gold medal, so I'm feeling so proud, so amazing. And the journey till here was not easy. It was so difficult from the trials itself. I had trial with Nikhat Zareen, Meenakshi Uday, and many world champions were there in the trials. Then in the Commonwealth Games, also the Ruby White, the final opponent, was also very good. So I managed to play my natural game and defeat her.
6: हर एक पंच के बाद आप खुद ही हाथ पकड़ के सेलिब्रेट कर रहे थे, वो स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, ओके एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना चाह रहे थे?
5: हाँ जी, क्योंकि रूबी वाइट भी बहुत अच्छी बॉक्सर है, तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी टक्कर की बाउट होने वाली है, लेकिन मतलब मैं तब भी तो स्कोर कर रही थी, तो मैं हाथ ऊपर कर रही थी दिखाने के लिए कि हाँ मैंने स्कोर किया है. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उससे आता है.
7: I'm feeling very good, even proud also, because the sacrifice of all athletes' family, they are showing their result here only. Even our federation did very much for us, ISAI, TOPS, Khelo India. So I just want to say thanks to them, because all of their hard work, the result is here. एक्चुअली मेरा लास्ट के 2024 थोड़ा अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं पेरिस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, और 2025 में मेरा सर्जरी हुआ, तो मैं हंगर था कि आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड प्ले कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स एंड ऑल द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वेयर आई गेट द चांस टू प्ले माई नेशनल एंथम इन माई वेट कैटेगरी.
8: ये सभी कोचिज का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट और हमारे कंट्री इंडिया, इस सभी की वजह से आज मैं सीनियर में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल आया.
6: फाइनल के बारे में बताइए कि कमबैक भी करना पड़ा, क्राउड सपोर्ट काफ़ी था, फाइनल का क्या चल रहा था?
8: हाँ जी, मैंने मेरी जो तीन फाइट बाउट हुई हैं, तीनों बाउटों में मैंने कमबैक किया है, तो मुझे जैसे फर्स्ट अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे अगर फर्स्ट राउंड स्प्लिट में चला जाता है तो कूल माइंड से रह के मैंटिलिटी के ऊपर भी काम करते हैं हम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने कमबैक कर लिया था आराम से.
9: अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. इस उम्मीद से आए थे गोल्ड लेके आना, लेकिन हमें विश्वास था सभी को, हालांकि कुछ बॉक्सर हमारे थोड़े कुछ उससे रह गए, लेकिन अगले आने वाले एशियन गेम में हमारे से ज़्यादा मेडल आएंगे, हमें विश्वास है. जाते ही एशियन गेम के लिए हमें कैंप लगेगा, तो वहाँ पर जाना है पहले. मेडल अपने माँ बाप, चाचा, कोच और सभी अपने दोस्तों को, इंडिया को.
10: ये सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी है, ये सबसे बड़ी जीत है कि इंडिया जीतना चाहिए. मैं मेडल लूँ या ना लूँ ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, कि इंडिया मेडल ले रहा है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और खेलूँ, अपने देश के लिए मेडल लाऊँ. मैं मोटिवेट होती हूँ मेरे जूनियर से, वो लोग इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मुझे भी और ज़्यादा हार्डवर्क करना है, मुझे अपने देश के लिए और मेडल लाना है. मैं ये मेडल हमारे जो फ्लड में बहुत सारे लोगों को जान गया है, उन लोगों को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ.
11: अभी तो अच्छा लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के, लेकिन बाउट में थोड़ा मनोबल हो गया था कि पहला राउंड 5-0 डाउन हो गया था, तो थोड़ा प्रेशर आ गया था, तो ये था कि बाउट जीतनी है कैसे भी कैसे करके. और बाकी जो सपोर्ट करने आए थे उनका भी धन्यवाद, उनके लिए मेडल जीता है.
12: थोड़ा चूक गए हैं और ये कमी मैं एशियन गेम में पूरी करने की कोशिश करूँगा. मैंने अपना बेस्ट दिया था और इंग्लैंड के और मेरे की फाइट खींची है, और थोड़ी चुप रह गई है, ये मैं एशियन गेम में पूरा करूँगा.
13: अपोनेंट काफ़ी टफ लग रहा है, फाइट अभी काफ़ी टफ.
12: हाँ, ये साउथ पा था और जो ओपोनेंट थे वे अपने ऑर्थोडॉक्स थे, तो साउथ पा के साथ इतना हम खेलते नहीं हैं, तो जो प्लानिंग की थी वो मतलब पूरी हुई थी, मतलब पूरी टफ बाउट चली थी, और अच्छा लगा मेरे को खेल के, मैंने अपना बेस्ट दिया है.
3: All right, so those were the medal winners. Let's listen into some more reactions coming in. The IOA president, P.T. Usha, as well as the boxing president.
14: It's a proud moment for our country, and it's a proud moment for every Indians. And every boxer goes and getting the gold medal and Janagana Mana comes. It's you cannot say in one word. It is an exciting, it's a proud moment for us. I'm so happy that they have. We had 38 medals, and out of that, 13 gold medal and 17 silver, and then 38 medals. And this is very limited events here it is happened, you know, 10 events only, but our major events is outside. So maybe in the 2030 maybe we'll come down again, and this is a very, very big achievement and great achievement from our athletes.
15: So if there's one man who must be chuffed, it's Ajay Singh, president of BFI. 7 gold medals and 6 all other sports combined. 13 in all, Ajay Singh's sport has contributed 7 and catapulted India to the 4th position. You must be over the moon.
16: We are absolutely delighted. And we are delighted that we were able to contribute to the country's kitty. I think one other really important thing for us is that with 7 golds and 3 silvers, this is the highest ever medal haul by any country in Commonwealth Games history.
15: Let's repeat this. 7 golds and 3 silvers, highest ever medal haul by any country in the history of the Commonwealth Games, and we are talking 1930 to 2026. Now that's incredible.
16: Incredible, incredible, and kudos to all our wonderful young players who played with such grit and determination.
3: And India bags a golden 1-2 in para shot put at the Commonwealth Games as Soman Rana clinched the gold with a season best throw, while Shubham Jyal secured the silver. NDTV's Vimal Mohan spoke to the 2 medal winners.
17: Bharatiya khiladiyon ne Glasgow Commonwealth Games mein tehlka macha diya hai, aur khaskar jo para sports hai, para athletes ne unhone kamal ka kaam kiya. Soman, aapse shuru karte hain Rana ki आपकी वीडियो हमने देखी है, कैसे आप माइंस में, पुंछ में आपका माइंस में आपका पांव चला गया था, और उसके बाद यहाँ आके आज मैंने देखा जब आप फ्लैग ऊपर जा रहा था तो आप पहली बार मुझे थोड़ा इमोशनल लगे, बहुत अच्छा सफर रहा ये।
18: जी सर, बहुत खुश लग रहा है इतना बड़े मंच पर इंडिया के लिए प्रतिस्पर्धा करने का टाइम मिल रहा है, और देश के लिए और पीसीआई साई सभी को मतलब मेडल देने का मौका मिल रहा है, इसमें बहुत खुश लग रहा है।
17: शुभम, आपकी भी कहानी शानदार, आप एसएसबी का इंटरव्यू देने जा रहे थे और वहां से मेडल तक।
19: मुझे, मैंने ये नहीं सोचा था कि एग्जैक्टली 4 साल बाद मैं कॉमनवेल्थ खेल रहा हूँ, एंड नॉट इवन खेल रहा हूँ बट मेडल भी लेके दूंगा देश के लिए, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था।
17: राकेश जी, इन दोनों को तैयार करना और जो आम प्लेयर को तैयार करने में आपको क्या लगता है किसको ज्यादा मुश्किल है?
20: सर, इन लोग का मुश्किल तो नहीं है सर, बेसिकली ये लोग आर्मी वाले हैं मेन, तो पहले अंदर से पैसे वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो इनपे थोड़ा सा काम करने में इन्होंने रिजल्ट दिया।
17: सत्या सर, आप में एक बहुत खास बात है, मैं पिछले 10-15 साल से देखता हूँ, आप जिस प्लेयर के बारे में बोलते हैं मेडल मिलेगा तो उसको मेडल मिलता है।
21: कोई भी एथलीट को मैं एक्चुअली थोड़ा टेक्निकली भी देखता है, उसका क्या दम है, उसका सब कुछ मेरे को थोड़ा सा पता चलता है। मैं खुद इंटरनेशनल एथलीट था, वो मेरे को पता चलता है ये एथलीट का इतना दम है। मेरा साथ राकेश जी था, हम भट्ट को दोनों इस ये दोनों का इवेंट का टाइम में भी हम देख रहा था, ये एथलीट का कोर इतना अच्छा है, ये इतना फेंक सकता है, इतना इसका कोर नहीं है, इतना ही फेंक सकता है। मैं वो दूसरा खिलाड़ी का भी मैं एनालिसिस करके बोलता था।
3: All right, with that, time for us to slip into a short break. More news and updates coming up on the other side. Do stay tuned. Flood fury batters a

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
6: सबका

0: He respects all party there, because he wants to know the feelings of the people, of every section of the people. But this government says that we are not interested, all party meeting will not give good result. Because they are afraid that they will be get exposed. If the all party meeting is conducted, all the parties will point out the mistakes done by Vijay, which they are afraid of.
1: All right, so the DMK, they're targeting a Tamil Nadu chief minister over the Mekadatu issue as well as the Kaveri water. Remember, both sides, this has become a politically very hot issue, with the opposition targeting, in Karnataka, you have the BJP targeting the Karnataka government, the Congress government there. And in Tamil Nadu, you have the DMK hitting out at Chief Minister Vijay, and this time saying the reason that Vijay is not calling for an all-party meeting is because his shortcomings, his wrongs will then be exposed. On the other hand, Karnataka BJP President Vijendra writing to the Tamil Nadu Chief Minister regarding the same Kaveri water issue, saying that we must resolve these matters. I'm reminded of the long-standing issue surrounding the Thiruvallavur statue in Bengaluru, which was eventually resolved through statesmanship, is what he is reaching out and trying to reach out to the Tamil Nadu Chief Minister, saying these issues need to be resolved. But on the other hand, the DMK claiming that the reason Chief Minister Vijay is not calling for that all-party meeting is that his shortcomings, his failures will be exposed, and that is the reason that he is not calling for an all-party meeting on this very, very contentious issue. Let's go across to Ritu now for more. And Ritu, while the DMK attacks Tamil Nadu Chief Minister Vijay, on the other hand, the BJP in Karnataka writing to the Chief Minister.
2: Well, of course, you see, as you pointed out, we've been seeing how the political war of words have erupted between Tamil Nadu as well as Karnataka. When we speak about the Kaveri water sharing issue, which has always been a debatable topic between both these states politically as well and in a legal aspect too. You see, of course, even as the DMK is all out to attack Chief Minister Vijay, Tamil Nadu Chief Minister Vijay, there here in Karnataka, you have the BJP state president D.Y. Vijendra writing a letter directly to that of Tamil Nadu Chief Minister regarding this whole matter, asking him to come with an open mind. But meanwhile, let me just also give you up this update that, Karnataka Chief Minister D.K. Shukumar has called for an all-party meeting regarding this Kaveri water sharing matter. And there you can see, behind me, all the leaders have apparently started arriving here at Krishna, which is the official residence office of D.K. Shukumar. A lot of, movement that we are seeing here, so BJP leaders are coming over here. The former chief ministers of Karnataka are also gathering right here at the CM's residence office to discuss this whole matter. So yes, here in Karnataka, we are seeing that united front being put by BJP, by the Congress for that matter. And it should be seen whether we will be seeing Union Minister H.D. Kumaraswamy also coming to attend this meeting. That needs to be seen. But yes, meanwhile, in Karnataka, crucial all-party meeting will begin in few minutes now. Back to you.
1: All right, Ritu, thanks so much for joining us with those details. So once again, a political hot potato, the Kaveri issue, always a lot of emotions tied into this issue. So as we report on the Kaveri row, it's only intensifying. Now, three big developments have taken place. Remember, this is a very emotive issue between Tamil Nadu and Karnataka. Stalin has now moved the top court. Janayagan faces a halt in Karnataka, and D.K. Shivkumar called for that all-party meeting. The Karnataka chief minister says the final call on water release will come after consultations. Kaveri pressure mounts as the release order demands Karnataka release 3,500 cusecs daily for 15 days. Remember, this is crucial for Tamil Nadu farmers, but it's also something that benefits Karnataka farmers if the water is kept back. Well, let's just go across to where the Prime Minister is launching an anti-drug campaign. It's a 100-week campaign which is aimed at the youth of the country.
3: आंदोलन को एक नई रूप दिखाने के लिए और अपने आशीर्वाद प्रदान करने हेतु देश के विभिन्न आध्यात्मिक संगठनों के पूज्य संत महात्मा सम्माननीय महंत पूज्य आचार्यगण पूज्य स्वामीगण पूज्य अम्मा तथा अनेक धर्मगुरु भी उपस्थित हैं साथ ही केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रीगण माननीय सांसदगण तथा देश भर से जुड़े हमारे करोड़ों युवा साथी भी आज इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा बने हुए हैं
4: माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज प्रातः से ही देश भर से हमारे साथ जुड़े युवाओं ने एक स्वर में नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और सामूहिक रूप से नशा मुक्त भारत की प्रतिज्ञा ली है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में माय भारत परिवार से आज लगभग 2.5 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। ये युवा शक्ति विकसित भारत के संकल्प को साकार करने और नशा मुक्त भारत का निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। साथियों, कहते हैं मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज आवश्यकता उसी पराक्रम की है, उसी संकल्प और उसी जागृत युवा शक्ति की, जो नशे के अंधकार को परास्त कर भारत को एक नई दिशा दे सके। इसी राष्ट्रीय संकल्प को जन जन तक पहुंचाने में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं भारत सरकार के माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल, साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी कि वे हम सब के समक्ष आए और इस अभियान के बारे में हमें मार्गदर्शन दें।
5: माननीय प्रधानमंत्री जी, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के प्रारंभ के अवसर पर आप वर्चुअली हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से आपने विकसित भारत की संकल्पना रखी थी और ये विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 140 करोड़ की जनता को उसके सहयोगी के रूप में देखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है और इसलिए स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है और इसलिए ही स्वस्थ समाज बनाने के लिए देश के युवा भी सशक्त हो, यह आपका आह्वान रहा है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमृत काल में आपने जो मार्गदर्शन करा और आपने कहा कि देश के युवा अमृत काल का सारथी है, अमृत काल में देश के युवा देश के लिए जिए, परंतु देश के युवाओं को अपनी आकांक्षाएं होती है, देश के युवाओं को अपनी अपेक्षाएं होती है, देश के युवाओं के मन में कई आइडियाज होते हैं, देश के युवाओं के मन में सेवा भाव होता है, देश के युवाओं को मार्गदर्शन भी चाहिए, वॉलेंटियरशिप भी चाहिए और उसको मेंटरशिप भी चाहिए। ऐसी स्थिति में युवाओं की अपनी सारी समस्या, अपना विचार, अपनी आकांक्षा और अपनी अपेक्षा को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा मार्गदर्शन मिले, उस उद्देश्य के साथ आपने माय भारत की स्थापना करी थी। माय भारत युवा संगठन आज आपके नेतृत्व में 2,26,00,000 युवाओं का संगठन बन चुका है। यही संगठन ने आपके संकल्प को आगे बढ़ाया है। आपने 2020 की 15 अगस्त को दिल्ली के रेड फोर्ट से ये भी कहा था कि मुझे देश को नशा मुक्त बनाना है और आपके देश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए माय भारत युवा संगठन ने ठान लिया और उसके पर काम करना चालू करा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज से 1 साल पहले देश के सभी आध्यात्मिक गुरुओं के जो यूथ विंग्स है उसको साथ में लेके, विविध नशा मुक्ति कार्य के साथ जुड़े हुए लोगों को साथ में लेके 2 दिन के लिए एक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करा था और ये आध्यात्मिक युवा सम्मेलन में युवाओं ने 2 दिन तक विचार विमर्श करा और ये विचार विमर्श से आने वाले 2 साल का यानी कि 100 वीक का कार्यक्रम का प्लानिंग करा। इस 100 वीक के लिए देश के युवा देश को नशा मुक्त बनाने के लिए आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना तैयार करी और ये कार्य योजना का नाम दिया गया काशी आध्यात्मिक समिति घोषणा पत्र। एक घोषणा पत्र में ये तय करा गया कि हम आने वाले दिनों में

0: कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे ताकि हम देश को प्रधानमंत्री जी के विचारों के अनुरूप नशा मुक्त भारत में कन्वर्ट कर सके। और इसलिए आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संगठनों के गुरु जैसे माता अमृतानंदमयी मठ से पूजनीय अम्मा जी, आर्ट ऑफ लिविंग से पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, हार्टफुलनेस से श्रद्धेय दाजी जी, बीएपीएस से पूज्य स्वामी ब्रह्म विहारी जी, गायत्री परिवार से पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी तथा ब्रह्म कुमारी जैसे अनेक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के पूजनीय गुरुजन आपके बीच में उपस्थित थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के कार्यक्रम में 26 हमारे राज्य के आदरणीय राज्यपाल उपस्थित है, 11 मुख्यमंत्री जी, 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने आज संकल्प लिया है, 28 यानी कि 28 स्थानों पर इस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए करा है, और अनेक लोगों ने शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा लेकिन इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके एक आह्वान पर युवा शक्ति का आपके साथ इस जन आंदोलन में खड़ा होना बताता है कि दौर बदलेंगे, कैलेंडर पर तारीखें बदलेगी लेकिन देश के युवाओं का आप पर मजबूत भरोसा कभी नहीं बदलने वाला है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रत्येक जन आंदोलन ने यह सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, संकल्प अटूट हो और फिर उसमें जन भागीदारी की सहभागिता हो तब संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। आप ही के नेतृत्व में इस देश ने स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन में बदलते हुए देखा, ओपन डिफिकेशन फ्री भारत का सपना साकार होते हुए देखा, भारत को नक्सलवाद मुक्त होते हुए भी देखा और फिट इंडिया मूवमेंट से युवाओं को खेल के मैदान में भी देखा है। हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ही हम नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भी अवश्य प्राप्त करेंगे। आपके एक आह्वान पर करोड़ों लोग अपना व्यवहार बदलते हैं, आपके एक संकल्प से जन आंदोलन खड़े हो जाते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अभियान भी उसी प्रकार सभी युवाओं का जीवन बदलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी प्रेरणा, सभी पूज्य संतों एवं आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद और करोड़ों युवाओं का संकल्प, इन तीनों का यह संगम भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बनने जा रहा है। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधु संतगण का वंदन करता हूं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ऊर्जादायी वक्तव्य ने हम युवाओं का मार्गदर्शन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण और सभी युवा साथी, अब हम एक वीडियो प्रस्तुति देखने जा रहे हैं जिसमें नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के देश भर की कुछ प्रेरणादायी झलकियां संकलित हैं।
2: युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है, लेकिन जब यही शक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाए तो राष्ट्र निर्माण की गति धीमी हो जाती है।
3: नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है। हम अपने देश के युवा को जितना ज्यादा बड़े लक्ष्यों से जोड़ेंगे उतना ही वो छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 और नशा मुक्त भारत के निर्माण के विजन के अनुरूप युवाओं को नशे के कुचक्र से बचाने हेतु माय भारत द्वारा शुरू किया गया है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान, जहां काशी से लेकर शिलांग तक युवाओं में जगाई गई नशा मुक्ति की अलख, जिसके अंतर्गत देश की सांस्कृतिक राजधानी

0: बनारस में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के 600 से अधिक यंग लीडर्स ने नशा मुक्त भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए 5 साल का रोड मैप निर्धारित किया। इसी से प्रेरणा लेते हुए 21 सितंबर 2025 को पूरे देश में 2370 से अधिक जगहों पर 60 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए, जहां लाखों युवाओं ने नशा मुक्त और स्वदेशी अपनाने की शपथ ली। माय भारत का ये अभियान पूर्वोत्तर के हर युवा तक पहुंचे। इसके लिए मेघालय की राजधानी शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में युवाओं की प्रतिभा व ऊर्जा को प्रभावी ढंग से सही दिशा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विकसित भारत के निर्माण के लिए नशा मुक्ति बेहद जरूरी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज किया जा रहा है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ, जहां देश के 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्ति के संकल्प के साथ लेंगे हर सप्ताह नए युवाओं को इस अभियान से जोड़ने का संकल्प। वहीं 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों, 7,000 से अधिक ब्लॉक वाइज माय भारत वॉलंटियर्स, औद्योगिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, हजारों माय भारत यूथ क्लब और एनजीओ द्वारा प्रत्येक रविवार नशा मुक्ति पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पोर्टल पर चल रही कल्चरल गतिविधियों के अंतर्गत लोकगीत, लघु फिल्म एवं रील, चित्रकला, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कविता, वाद विवाद एवं नारा लेखन जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से लाखों युवाओं को नशे के खिलाफ एकजुट किया जाएगा। विभिन्न कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थाओं में इसी थीम पर माय भारत द्वारा युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं, जहां युवाओं को विकसित भारत के निर्माण हेतु नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया जाएगा। युवा है भारत का कर्णधार, देश की जिम्मेदारी लेने के लिए है तैयार।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत।
2: ऋग्वेद में कहा गया है यथा दृश्यम तथा बोधा, अर्थात जो बात हृदय को स्पर्श कर ले वही सबसे स्थायी प्रेरणा बनती है। इसी उद्देश्य से शब्दों से आगे बढ़कर आज संदेश अभिनय के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, क्योंकि कभी कभी एक प्रस्तुति वो कार्य कर देती है जो लंबे भाषण भी नहीं कर पाते। आइए उत्साहपूर्ण तालियों के साथ हम स्वागत करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और माय भारत वॉलंटियर्स का, और उनके इस प्रेरणादायी नुक्कड़ नाटक के साक्षी बनें।

0: तुम्हें पकड़ने नहीं आता, मैं किसी के घर भी नहीं जाता, मैं दरवाजा भी नहीं खटखटाता। लोग मुझे अपने हाथों से बुलाते हैं, पहले मुझे दोस्त कहते हैं, फिर आदत, और आखिर में मालिक।
1: ये कहानी है हर उस युवा की जिसने सपने देखे हैं कुछ बनने के, आगे बढ़ने के, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के, लेकिन एक भूल उनके सपनों को चकनाचूर कर देती है, उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है।
2: ए राहुल,
3: ए राहुल, सुनना,
2: रुकने यार, कहाँ आज फिर से लाइब्रेरी?
4: हाँ भाई, एग्जाम सर पर है, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना।
3: ओहो, सिर्फ ये ऑफिसर बनेगा और हम सब इसके सिक्योरिटी गार्ड। सुनना, आज रात पार्टी है, चलेगा? चलना।
4: अरे नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता।
2: चलना। थोड़ी देर यार, थोड़ी देर, बढ़ाई से बड़ी होती है जिंदगी।
3: एग्जैक्टली,
2: तो एंजॉय कर ले।
3: हाँ।
4: और सपने
2: देख, सपने देखने की जो मशीन होती है ना, यानी दिमाग, अबे उसको भी तो छुट्टी चाहिए। एक बार चलना यार।
4: अरे मैं नहीं जाऊंगा यार।
5: बस एक बार।
0: देख, जो सही इंसान होता है वो फैसला खुद करता है। यस, यू कैन डू इट। मैं तो बस मौका देता हूँ।
4: लेकिन तुम हो कौन?
0: नशा,
5: नशा, नशा,
0: जिसे दुनिया कूल कहती है।
5: कूल, कूल,
0: जिसे कुछ लोग स्टेटस कहते हैं।
5: स्टेटस, स्टेटस,
0: जिसे कुछ लोग आजादी समझते हैं।
5: आजादी, आजादी,
0: और बाद में मैं बन जाता हूँ लत,
5: लत, लत।
0: और सुन, मैं तो बीड़ी, सिगरेट, शराब से भी आगे निकल चुका हूँ, गांजा और चरस से भी आगे। मैं तो आजकल सिंथेटिक ड्रग्स के माध्यम से युवाओं को मजे देता हूँ। देख, तुझे पार्टी तक ले आया मैं, तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी,
5: पड़ेगी, पड़ेगी, पड़ेगी।
3: ए राहुल, सुना, ये वेब पकड़, रील बनाएंगे।
2: हाँ, सामने सामने शूट कर।
3: भाई, पूरा स्वैग आना चाहिए।
2: स्वैग आएगा, 1000 likes आएंगे यार।
3: जोर शॉट, जोर शॉट,
2: 1 million।
4: अरे भाई, मुझे नहीं करना है।
2: अबे डरता है,
3: इतना सीरियस मत बन यार, जिंदगी एंजॉय कर।
2: हाँ।
3: अरे सुन्ना भाई, बस एक कश ले, बाकी हम सब संभाल लेंगे, संभाल लेंगे ना।
4: हाँ। हाँ। भाई नहीं कर रहा मुझे।
3: अरे तू दोस्त है ना मेरा।
2: हाँ।
3: तुझे दोस्ती की कसम।
2: हाँ।
3: दोस्ती की कसम। ट्राई कर, ट्राई कर, कर, ट्राई
4: कर, कर, कर, कर।
2: वाह, क्या फ्रेम है ब्रो,
4: एक कश।
1: याद रखना, जिंदगी को बदलने वाला दूसरा कश कभी नहीं होता, हमेशा पहला कश ही जिंदगी को बदलने वाला, या यूं कहिए कि उसे बर्बाद करने वाला होता।
0: क्यों, कैसा लग रहा है?
4: अजीब, लेकिन अच्छा लग रहा है।
0: वही तो, अब तूने मुझे अपना लिया है तो मैं भी तुझे अपनाता हूँ। जिंदगी तेरी, इच्छा मेरी, सांसें तेरी, रफ्तार मेरी, सपने तेरे, फैसला मेरा।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता।
0: अब से तू नहीं, केवल मैं चाहूंगा।
4: मतलब?
0: अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। देख, तुझे जो करना है वो कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा।

0: कहाँ से दूं तुझे? इस महीने घर का किराया देना बाकी है, तेरी बहन की फीस भी बाकी है।
1: मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस पैसा चाहिए अभी के अभी, इसी वक्त।
0: जिस हाथ से तुझे पहली बार खाना खिलाया था, आज उसी हाथ से डर लगने लगा है मुझे। माँ, कल आखिरी तारीख है, मेरी फीस।
1: फीस? कोई फीस फीस नहीं, मुझे मेरा पैसा भी चाहिए इसी वक्त।
0: भैया, पहले तो तुम कहते थे कि मेरी बहन डॉक्टर बनेगी, आज मेरी किताबें बोझ हो गई तुम्हारे लिए।
2: जरा सोच, क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जिनका बेटा नशे का शिकार हो जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ले ले इसे बेच दे, शायद तुझे इससे ही चैन आ जाए।
0: बेटा बेटा, याद है तुझे जब तू बचपन में गिरता था तो कहता था, माँ फूंक मार दे मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं फूंक मारती थी और तू ठीक हो जाता था। आज कहाँ फूंक मारूं मैं, तेरे शरीर पर, तेरे मन पर, या उस जहर पर जिसने तुझे मुझसे छीन लिया है।
3: देखा, मैंने इसका घर नहीं तोड़ा, मैंने इसकी माँ को नहीं रुलाया, मैंने इसकी बहन की फीस नहीं छीनी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका हाथ पकड़ा था, जो भी किया इसने खुद किया।
4: यही नशे का सबसे बड़ा झूठ है। नशा कभी अकेला नहीं आता, यह अपने साथ लाता है गरीबी, अपराध, बीमारी, हिंसा, टूटते हुए रिश्ते और बिखरते हुए सपने। याद रखना, नशा सबसे पहले हमारी सोच पर हमला करता है, हमारे सपनों पर हमला करता है, और जिसके सपने मर जाते हैं वो जीते जी हार जाता है।
1: माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ, माँ।
0: हाँ बेटा, मैं यही हूँ।
1: माँ मुझे बचा लो, माँ मैं जीना चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं इसे निकलना चाहता हूँ। माँ,
0: हाँ बेटा, मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन तुझे खुद निकलना होगा इस सब से।
2: हाँ बेटा,

0: I'd say we're decoding today the most confusing yet exciting pivot in Samsung's history. In this hand is the Galaxy Z Fold 8, short, wide, and finely designed for human hands. And in this hand, the Z Fold 8 Ultra, a spec monster that refuses to let go of the past. I've spent a few days with both, even after I came back from my travels, shooting, typing, multitasking. One of these is a game changer, and the other, maybe not there yet. Let's start with the standard Fold 8. For years, we've complained. We've all complained about that narrow candy bar cover screen on these devices, on the previous Fold series as well. You know the struggle. Fat fingering typos, feeling like you're typing on a TV remote. Well, Samsung finally listened. This is the passport form factor we've all been waiting for. It's shorter and it's wider, and honestly, it's a relief. Using this closed feels like you're using a regular iPhone or a Pixel device. My thumbs aren't fighting for space, and when you open it, you get a canvas that actually makes sense for media consumption. I've watched a bunch of shows already on this right here on the road. The black bars are thinner. You're using more of the screen real estate. It's practical. It's the foldable for people who actually want a phone first and maybe a tablet second. But here's the real rub. To get this form factor, you're sacrificing the zoom. No dedicated telephoto lens here, just a main and an ultra wide. For 1,80,000, that is a tough pill to swallow. You are paying premium prices for mid-range camera features. Now, let's talk about the Ultra. Now, this year there's been a bit of a nomenclature change at Samsung. They're calling this the Ultra. And I think it might be a precursor to what's coming from Apple Park soon. But if you love the tall, narrow feel of the Fold 7, this is for you. But look closely, it is incredibly thin, 8.9 mm folded. Even if you compare it to last year's, it makes a huge difference. That's thinner than some standard slab phones. It's built with flex titanium, and yes, the crease is basically gone, but it's still an ergonomic nightmare for one-handed use. It's tall, it's top heavy, and while that 8-inch inner screen is massive for Excel sheets and split-screen multitasking, which runs like a dream on the Snapdragon 8 LE Gen 5, by the way, it feels more like a piece of office equipment than a daily driver. You're buying this for one reason: the cameras, and they've gotten much better. We finally have a 200 megapixel main sensor, 3x optical zoom on a foldable. This was already Fold 7, the Fold.
1: मेरे युवा साथी, मैं आज इस शुभ घड़ी पर शुभ संकल्प के लिए करोड़ों करोड़ों नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात है, ये राष्ट्र के लिए है। साथियों, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है। साथियों, काशी का सांसद होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि यह अभियान का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले साल काशी की पवित्र धरती से शुरू हुआ था। इसलिए वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ साथ इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, संतों के आशीर्वाद भी हैं और महान सांस्कृतिक विरासत भी है। इसमें वो सांस्कृतिक समर्पण भी है जिसने सदियों से नशे को खारिज किया है। यही वजह है देश के 125 करोड़ से अधिक आध्यात्मिक 125 आध्यात्मिक संगठन, करोड़ों करोड़ देशवासियों के हित के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामाजिक संगठनों ने, एनजीओज ने इस दिशा में संकल्प लिया है। सबने मिलकर काशी डिक्लेरेशन के जरिए रोडमैप तैयार किया है और आज हम देख रहे हैं काशी से उठा वो कल्याणकारी विचार अब ये एक नेशनल प्रोजेक्ट बन गया है। आज से देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ हो रहा है। साथियों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयास करे तो कभी कभी निराश हो जाता है, थकान महसूस करता है, लंबी दूरी चलने में मन तैयार नहीं होता है, लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है। सामूहिकता की ताकत होती है और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है। थोड़ी देर पहले देश के लाखों युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। आपने अपने जीवन को नशे से दूर रखने का संकल्प लिया है। आपने अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपने समाज में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स। साथियों, आज हजारों स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लाखों विद्यार्थी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े हैं। माय भारत के वॉलंटियर्स भी लाखों की तादाद में इससे जुड़े हैं। मेरे एनएसएस के नौजवान भी आज हमारे साथ शामिल हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग संस्थानों से, अलग अलग बैकग्राउंड के 1 करोड़ से अधिक युवा आज एक साथ है। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप सब इस बड़े मूवमेंट के लीडर हैं। आपने मेरे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि भारत का युवा कितना जागरूक है, कितना समझदार है और अपने कर्तव्यों के प्रति कितना गंभीर है। मैं आप सभी को इस अभियान के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी हैं। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप ही 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे और उसके शिखर पर आप ही बैठे होंगे। उसका सारा रसपान करने का अवसर आप ही को मिलने वाला है। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है। नशा फोकस को भटकाता है और धीरे धीरे युवा को उसके अपने सपनों से दूर ले जाता है। अभी जिन नौजवानों ने नाट्य मंचन किया, बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से नाट्य मंचन में उन्होंने समस्या भी बताई, समस्या के कारण पैदा हुए संकट भी बताए और बाहर निकलने के सामूहिक प्रयत्न का रास्ता भी दिखाया। नाट्य मंचन छोटा था, लेकिन जैसा उन्होंने कहा, आओ हम नाटक देखें, ये नाटक नहीं था, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था, हमें जगा रहा था, हमें जूझने के लिए प्रेरित कर रहा था। साथियों, आजकल हम देखते हैं आज के युवा स्टार्टअप की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है, एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है, समाज से भी नफरत का शिकार बन जाता है। नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है, एक बहन की राखी की उम्मीद को कमजोर कर देता है, एक छोटे भाई का आदर्श छीन लेता है, घर के बुजुर्ग हर दिन इस दर्द को जीते हैं कि उनका अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है, खुद को गला रहा है, तिल तिल गल रहा है, आंखों के सामने उसे बर्बाद होते देख रहे हैं। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। साथियों, नशा मुक्त रहकर आपको अपने पोटेंशियल को प्रोटेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है, ड्रग्स कुछ समय के लिए हाई देता है लेकिन आपके कैरियर और फैमिली लाइफ को लो कर देता है। हमें नशे को किसी भी तरह की स्वीकार्यता नहीं देनी है। साथियों, हमारे समाज में भी हमेशा नशे को एक बुराई के रूप में देखा है। हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें इससे बचने के लिए चेताया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, जितू पीतई मती दूरी होई, बरलू पवई विची आई, आपना पराया न पिछाणे, खस बहू धके खाई। अर्थात जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि और विवेक साथ छोड़ दे, इंसान अपने और पराये की पहचान भूल जाए, ऐसा नशा उसे पतन की ओर ले जाता है। साथियों, हमारी संस्कृति में बचाव के लिए चेतावनी भी दी गई है और नशे की आदत लगने पर उससे निकलने के रास्ते भी बताए गए हैं। समाज का सहयोग, योग और ध्यान की ताकत ये नशे के खिलाफ हमारे अंतर मन को ताकत देते हैं। और आज तो हमारे पास नशा छोड़ने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हैं। इसलिए अगर कोई युवा गलती से नशे में फंस भी गया है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके। आपको भनक आ जाएगी, थोड़ा ध्यान रखिए, पता चलेगा उसमें बदलाव आ रहा है, वो खोया खोया लग रहा है, वो मुंह छिपा रहा है, कमरे में बंद हो जा रहा है, देर रात आ रहा है, पैसे अनाप शनाप मांग रहा है, ये सारी चीजों से पता चल जाता है, भनक आ जाती है, कुछ मामला गड़बड़ है। साथियों, एक आवाहन मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के हमारे प्रोफेसर साथियों से भी करना चाहता हूं, आप भी कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ ड्रग्स के खतरों पर बात करें, नशे के खिलाफ अपने कैंपस में एक मूवमेंट चलाएं। आपके प्रयास बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं। और साथियों, हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो युवा नशे से लड़कर बाहर निकलते हैं वे कमजोर नहीं होते, जो नशे को परास करके निकला है ना, वो असली योद्धा होता है। समाज को उनका सम्मान करना चाहिए, अपनापन देना चाहिए, उसे दूसरा अवसर देना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स से जुड़ा किसी का अतीत उसकी पहचान नहीं हो सकता, उसका साहस उसकी पहचान होता है। साथियों, ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है, हजारों करोड़ रुपये की ड्रग्स भी जब्त की गई है। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। मुझे विश्वास है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर कोई इसे मिशन मोड में करेंगे। मुझे विश्वास है हमारे देश का युवा नशे से मुक्त रहकर अपनी युवा ऊर्जा को न केवल संरक्षित करेगा, बल्कि विकसित भारत के संकल्पों को भी आगे बढ़ाएगा। और जब मैं आज अनेक महान संतों को मेरे सामने देख रहा हूं, दूर से मैं मन से उनको प्रणाम करता हूं, मैं इन सभी सामाजिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक गुरुजन, आपका देश के कोने कोने में संगठन है, आपके युवा साथी डिवोटीज हैं, आने वाले 100 दिन में हर एक संगठन

देश के ऐसे आध्यात्मिक सामाजिक संगठन, युवा संगठन एक एक सप्ताह अपने जिम्मे ले ले और बाकी सारी शक्तियां जुड़े और रविवार को सब मिलकर के करें। आप कल्पना कर सकते हैं देश में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। मैं एक बार फिर आप सबने समय निकाला, इस पवित्र कार्य में हम सबको आशीर्वाद दिए, इसके लिए संतों का, आचार्यों का, संगठन के महारथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 1 करोड़ से ज्यादा जुटे नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं भाई भारत के वॉलंटियर्स की बधाई करता हूं। वो जो भी ठान लेते हैं आजकल करके दिखाते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे माय भारत के वॉलंटियर्स को मिलने का मौका मिला। वे हिंदुस्तान के सीमावर्ती गांवों में जाकर के एक एक सप्ताह रुक करके आए हैं। जिसे कभी देश का आखिरी गांव कहा जाता है, जाता था, जिसको आज हम देश का पहला गांव कहते हैं, वहां जाकर के आए। उनके अनुभव बड़े प्रेरक थे और आज इतना बड़ा कार्यक्रम माय भारत के वॉलंटियर्स कर पाते हैं, ये अपने आप में उनकी राष्ट्र के प्रति जागरूक समर्पित भावना का प्रतीक है। मैं उनकी भी बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सामूहिक प्रयत्नों से ये हमारी मूवमेंट घर घर पहुंचेगी, हर युवा के दिल में पहुंचेगी और ये ड्रग्स के कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा खौफ भी बन जाएगी। आइए हम सब मिलकर के आगे चले। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
2: Really?
1: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
3: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
4: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा।
4: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
4: आपकी फैमिली है?
5: कौन?
4: बच्चे हैं?
5: तीन साल।
4: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
4: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
4: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
3: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
6: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
7: So many attacks.
6: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
7: It's incredible.
6: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
7: Welcome to Left, Right, and Center.
6: Hard facts.
7: War struck country.
6: Hard questions.
7: In the Ukraine.
6: 30 years of trust.
8: In the Kargil area.
7: North Ukraine.
9: In France. In Italy.
7: At Srinagar.
9: France.
7: Vishnu Shom for NDTV.
6: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
3: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
4: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
7: अरे मेरे राजा।
8: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
9: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना।
8: आप कहाँ से हैं?
9: हरियाणा।
8: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
9: डेढ़ महीने पे।
8: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
9: 3 साल।
8: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
9: बहुत।
8: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
9: श्रीनगर तक अलाउड।
8: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है। सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।
10: व्हाट सीम्स सेटल्ड for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
11: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
12: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
13: This location from Tel Aviv
12: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
14: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
15: The Ayatollah Khamenei is gone.
16: There has been a missile attack right behind you.
17: And we need to rush into a shelter.
18: Heading there.
19: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
12: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
20: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
21: Really?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
5: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
6: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आर प्योर मसाला।
9: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
10: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना।
9: आप कहाँ से हैं?
10: हरियाणा।
9: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
10: डेढ़ महीने पे।
9: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
10: 3 साल।
9: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
10: बहुत।
9: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
10: श्रीनगर तक अलाउड।
9: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है। सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।
11: व्हाट सीम्स सेटल्ड for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
2: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
12: This location from Tel Aviv
2: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
13: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
14: The Ayatollah Khamenei is gone.
15: There has been a missile attack right behind me,
16: and we need to rush into a shelter.
17: Heading there.
18: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
2: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
19: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
20: Really?
19: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
3: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
4: वेट सिद्धार्थ सर, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा।
4: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
4: आपकी फैमिली है?
5: और
4: बच्चे हैं?
5: 3 साल।
4: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
4: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
4: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
3: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
1: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: just few inches away is POK.
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. Is it fire?
3: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.

0: percent said no, 20% said can't say. Then, should police act against abusive language used by protesters? 54% said yes. Only 26.9% said no and 18% said can't say. And which is what brings us to the question, Smriti Chandel, many people today are saying, and this young girl, Ruchika Singh, you know, who said some pretty crude, offensive things about the Prime Minister, now an FIR has been filed against her on your complaint. People are saying ki bhai freedom of expression bhi to hota hai. Theek hai, bachchi hai, but usko jail mein thodna dalenge aap. FIR kara diya. But isn't this an overkill?
1: नहीं गाली गलौज वो गाली गलौज क्षम्य नहीं है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल क्षम्य नहीं है और हम सभी के बच्चे सोशल मीडिया पर हैं और अगर इस तरह की बातों को समर्थन आप सभी लोग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं हम सबके बच्चे अगर इस तरह की भाषा घर में इस्तेमाल करने लगे तो कोई उसको जो है अच्छा नहीं मानेगा
0: आपको लगता नहीं है कि प्राइवेट लाइफ में हॉस्टल में कॉलेज में गाली गलौज तो होती है ना करना चाहिए नहीं करना नहीं चाहिए बट क्या उसके लिए जेल जाना चाहिए किसी को
1: प्राइवेट लाइफ में या हॉस्टल लाइफ में इस तरह की गाली गलौज और भाषा तो मैंने नहीं सुनी है ना और जो लोग करते होंगे उनका मुझे पता नहीं है लेकिन मेरी जो मेरी नजर में आया और इस तरीके से संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति के बारे में प्रधानमंत्री जी के बारे में उनकी स्वर्गवासी माता जी के बारे में और एक फॉरेन लेडी लीडर के बारे में इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना गलत
0: क्योंकि आशुतोष जी आपने एक कमेंट किया था मेरे ही शो पे जब आपने कहा था ये एग्जूबरेंस है पर यहाँ पे सर्वे में पीपल आर सेइंग 54% आर सेइंग दैट इफ दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड एंड इट डजंट जस्ट स्टॉप एट अब्यूज देर आर सम पीपल एंड आई एक्चुअली बिलीव दैट दे हैव डन इट ओनली फॉर चीप थ्रिल्स एंड वायरलिटी मेनी ऑफ देम हैव सेड थिंग्स लाइक अरे उस मोदी को मार दो अगर मोदी यहाँ पे होता तो मैं तो उसको खत्म कर देता कैन दिस बी अलाउड टू पास एज एग्जूबरेंस पीपल इन द सर्वे डोंट अग्री
2: बट एक बात बहुत ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है सार्वजनिक जीवन में कोई किसी को गाली नहीं देता और गाली देना भी नहीं चाहिए सार्वजनिक जीवन में हम 7 लोग यहां पैनल पे बैठे हुए हैं कोई ये कह सकता है कि हमने अपने जीवन में गाली नहीं दी मैं तो कह सकता हूं कि मैं रोज कम से कम गाली देता हूं और अपने मित्रों के बीच में बातचीत में करता हूं कोई बुरा नहीं मानता उस बारे में देखिए दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि मैं एक चीज का बड़ा बहुत पक्षधर हूं और मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री का दिल बहुत बड़ा है बच्चों को एफआईआर करके जेल नहीं भेजना चाहिए आप उनको बुला के डांट दीजिए दो थप्पड़ लगा दिया अब एफआईआर करके जेल भेजना ये कुछ ज्यादा ही है
0: तुषार
2: ये एफआईआर करना मुझे बिल्कुल आपकी राय से सहमत नहीं प्लीज
3: वी आर कंफ्यूजिंग टू थिंग्स इट्स नॉट अबाउट अ चाइल्ड और एन एडल्ट दिस इज अ कंट्री वेयर समवन मेड अ कमेंट ऑन समवन एल्सस रिलीजन and an innocent tailor was butchered in the name of Sir Tanse Judha. Let's be very clear. Now, that was said in public sphere. That was said before the camera. The lady in question beat a child, and she is not a child from what I have read of public records. She's 25 years old. She said some very hard abusive words on camera. She said it for virality. It wasn't a private conversation. She willingly made it public. She knew she was on the camera. So the differentiation needs to be clear. Either we become such a liberal society that we reject blasphemy laws, we reject FIRs on abusive language, we become free speech absolutists. Either then we have blasphemy laws, we at least need to probe an FIR like this, which is what your survey also says, that probe the FIRs. Don't put them in jail, but at least probe the FIRs. That's what majority of the surveys are saying, that probe karo, फिर देखो क्या करना है
0: राशिद किदाई
4: आई थिंक पद्मजा वी आर मेकिंग यू नो सिंपल थिंग्स लुक्स कॉम्प्लेक्स दिस वाज अ पॉलिटिकल एजिटेशन एंड वी हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशंस वेयर पीपल हु वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट That was the allegation and they were brought in as chief ministers. I can give you examples of Lal Denga, Hawaldar Lal Denga in Mizoram. I can think of that Assam chief minister, Prafulla Mohanta. I can think of the Akali leadership, Prakash Singh Badal and several others, not to talk of Sheikh Abdullah. All kind of thing. There was very serious allegations and they were imposed, they were put behind bar and they were given highest office in that particular state. So this is our legacy of political agitation. This is, I think the 54% people have just trying to be, you know, socially desirable. It should have been actually 100% pardon. 100% pardon.
0: Pradeep Bhandari. And you are not helping your popularity. You know, if popularity is dipping Pradeep Bhandari by seeming like a heavy-handed state, you are only going to impact your popularity further.
5: First of all, none of them is less than 18 years of age, neither are they juvenile. So first, a legitimate argument, no court in

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन
3: वॉचिंग एनी टीवी 24/7। द होप इज दैट बियॉन्ड दिस इलेक्शन this will be one of the major issues with multiple challengers in the fray. The TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
2: When stories have impact,
4: Padmajot Joshi, managing editor and prime time anchor,
2: the news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
3: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
5: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
6: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: Asta, the opposition has in turn asked and Chanda Chori hurt the Hindu Asta instead. A major terror probe breakthrough has been reached. All the STF has claimed that they arrested an accused called Hamim Mondal. He was linked to Pakistan-based handlers with allegations that planned to target the Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari and even carry out sabotage at Delhi's Jantar Mantar protest. Nasha Mukt Bharat push begins. The Prime Minister has launched anti-drug campaign 100-week drive against drug abuse. Over 1 crore youth today took pledge against the drug abuse. Flood fury continues to batter Assam. The death toll has climbed to 82. More than 78 lakh people have been affected across the state. Relief and rescue operations are currently underway. India has delivered a blockbuster performance at the Commonwealth Games, clinching a 16 medal in single day. A historic boxing hall powered the surge as the country's tally rose to 39 medals, with India climbing to fourth in the standings. Ladies and gentlemen, the political batter over the parliament skit on the alleged Ram Temple donation theft is now intensifying. An FIR has been registered in Varanasi against the leader of opposition Rahul Gandhi along with MPs Pappu Yadav and Avdesh Prasad over allegations of hurting religious sentiments during the protest. The BJP has launched a blistering attack accusing the Congress of mocking Sanatan Dharma and insulting crores of Hindu devotees. The opposition, however, has hit back in unison. The Congress says that exposing alleged theft of devotees cannot be treated as a crime. While Shiv Sena, UBT and the TMC have backed Rahul Gandhi, calling the protest justified and accusing the BJP of using FIRs to silence the political opponents. They have said that the actual Chanda Chori has hurt Hindu sentiments instead. Lots of political reactions coming in on that story.
1: Ghatiya, ghinauna aur apradhikrit tha. संतों का अपमान करना, राम भक्तों का अपमान करना, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो नहीं देना चाहिए, और उसके लिए देश की संसद के लिए जो चुन करके गए हैं सदस्य, उनके द्वारा और उसमें भी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश यादव और श्रीमती डिंपल यादव जैसे तमाम ऐसे सांसदों ने जो पप्पू यादव के जो एक स्वांग या ढोंग जो कह लीजिए करने का उन्होंने प्रयास किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, संतों को अपमानित करने का काम किया, राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में मैं भर्त्सना भी करता हूँ और ऐसे मामले में FIR होनी ही चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए.
2: The repulsive drama enacted by Rahul Gandhi and his coterie in the parliament precincts have grievously demeaned the Hindu faith and has insulted the sentiments of crores of Hindu devotees. Will Rahul Gandhi and his coterie will they dare to abuse other faiths and commit blasphemy in the most debased manner in which they have humiliated Hindu faith? It is very clear that Rahul Gandhi's protest was a farcical protest and it was deliberately intended to ridicule the and mock the Hindu Dharma.
3: जो भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव पर और बाकी नेताओं पर FIR करा रही है सनातन धर्म के अपमान के लिए, वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों के की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए.
4: राहुल गांधी पप्पू यादव जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक ठीक ही था. बीजेपी का ये कायदा है, कोई जिसको विरोध कुछ करता तो एक FIR लगा देता, ये FIR से कोई फर्क नहीं पड़ता. राहुल जो किया है ठीक किया है.
5: राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठाना ये अपराध है क्या? चोरी किसने की? बीजेपी के लोगों ने की. 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर में. 500 करोड़ की दान पेटियां दान पत्र चोरी हो गए, बड़े मछली छूट गई.

0: छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया और हमने ये मुद्दा उठाया संसद में और संसद के बाहर, तो हमारे ऊपर FIR लॉज होता है, शर्म नहीं आती लोगों को?
1: क्या कहूँ, इस पर ऐसी आती है। देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हुआ चंदा चोरी का, उस पर तो FIR कराने में इन्हें इतना टाइम लगा है? और मंचन तो सब चीज़ों का होता है, उन पर किस बात की FIR कर रहे हैं भाई? किस बात की FIR है मुझे समझ में नहीं आया। आप चंदा चोरी हुआ है ये तो सारा का सारा सामने आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। और अब तो ये कुछ भी करें इनका जवाब राम जी खुद देंगे, जो ये कर रहे हैं ना, इनका जवाब राम जी देंगे इनको।
2: मैं भी हिंदू हूँ और करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई। भावनाएं उस दिन आहत हुई जिस दिन चोरी और डकैती हुई। डकैती हुई, चोरी छोटा शब्द है, और चोरी किसके निज़ाम में हुई, डकैती किसके निज़ाम में? जिनके नाम से गाने बनवाए गए थे, जिनको बड़ा दिखाते हुए रामलला को छोटा दिखाया गया था, जो फलाने को राम को लाए हैं, आज गाना बनवाओ नया। जिन्होंने चंदा खाया है उनका क्या करेंगे? तो भावनाएं वहाँ आहत होती है। और मैं तो कभी कभी ताज्जुब करता हूँ कि इस देश में अगर आज कबीर वापस आ जाए, उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी मजहब को नहीं छोड़ा, किसी की रूढ़िवादिता को नहीं छोड़ा, किसी के करप्शन को नहीं छोड़ा। कबीर पे UAPA लगता इस होम मिनिस्टर के दौर में, कबीर जेल में होते बिना ट्रायल के।
3: देखिए, ये BJP के लोग सनातन धर्म को न मानते न सम्मान करते। ये BJP के लोग केवल और केवल सनातन को वोटों के लिए, नोटों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसको हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते। और जो भगवान प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चंदा और चढ़ावा की चोरी हुई है, डकैती पड़ी है, उसको हम लोग बेनकाब कर रहे हैं और करेंगे।
4: And from leading Mumbai's neat paper leak protest to becoming the face of a nationwide movement, Ria Aahir's journey is making headlines. The model and entrepreneur whose dramatic stand in front of a police van went viral has now been felicitated by MNS Chief Raj Thackeray for her courage. NCP SP Supriya Sule has also extended her support after Aahir alleged that she was subjected to online abuse and threats, prompting her to approach the Maharashtra cyber cell. So that's making headlines in Maharashtra. Moving on, let's tell you what's happening in the state of West Bengal. Well, a sensational FIR has uncovered an alleged Jaish-e-Mohammed-linked espionage and terror conspiracy, with investigators claiming that the network had international links. They targeted VIPs and even plotted attacks and potential and political assassinations. NDTV has accessed the FIR. There are two arrests that were made in two different states. Accused Arpita was nabbed from Jharkhand, and the prime accused Hamim, alias Hamim Fiogo, was arrested in Bardhaman in West Bengal. Now, the investigation points to an alleged international footprint with multiple WhatsApp numbers that were linked to Pakistan. The United States, the United Kingdom and even Mexico are now under scrutiny. The FIR also names Hamim Mondal, alias Hamim Fiogo, alleging that he ran an espionage network. He received instructions from Pakistan and that he maintained several foreign-linked WhatsApp connections as well. Investigators claim that the network gathered intelligence on VIPs and key installations. They recruited locals and even planned the kidnappings, murders and other crimes as well. The FIR alleges Hamim and Arpita worked together using a honey trap to target Suvendu Adhikari as a part of a larger conspiracy to assassinate the West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari. Investigators are also alleging that the conspirators planned to disguise themselves as police personnel, infiltrate the CJP protest at Jantar Mantar and attack the demonstrators.
5: देखिए, जो उग्रवादी पकड़ा गया है इसको लेकर इंक्वायरी चल रही है, आगे और भी खुलासा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो उस समय जंतर मंतर में चला, छात्रों के आक्रोश को कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए उसको इस्तेमाल करने का काम किया है। दे हैव यूज द इमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट। तो हमारी सरकार इसको इंक्वायरी कर रही है और इसके तह तक जाएगी।
6: Arrest of suspected terrorist Habib Mandal led this investigation team to Kolkata's Howrah

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: Launch control, 0 to 100.
4: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
5: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
4: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
6: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
7: This location from Tel Aviv
6: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
8: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
9: The Ayatollah Khamenei is gone.
10: There has been a missile attack right behind you,
11: and we need to rush into a shelter.
12: Heading there.
13: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
6: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
14: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV Newsroom, weekdays at 4 PM.
15: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
16: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े, vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
6: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
17: You're watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, every day.
4: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
5: Just few inches away. इस पी ओके
4: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
4: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
5: Just few inches away. Is POK.
4: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, every day. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
2: This location from Tel Aviv
1: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
3: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
4: The Ayatollah Khamenei is gone.
5: There has been a missile attack right behind me,
6: and we need to rush into a shelter.
7: Heading there.
8: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
1: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
9: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
10: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
11: ये युग तुम्हारा ये रण तुम्हारा हर चुनौती तुम्हारी हर शिखर तुम्हारा तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान
12: हर सेक्टर हर स्टेट हर रीजन हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें वंदे भारत

0: perspective. For example, it wasn't just about, you know, the thing that neem ka patta karwa hai. I saw videos where people are walking up to policemen who are just standing at the barricade and saying, tu ja ke chudiya pehen le, tu nikamma aadmi hai, tere pe thookte hain hum. Is that okay? I mean, I understand. Look, there is rage, there is anger. But is this okay?
1: सबसे पहले तो ये ज़रूरी समझना है कि जो हमारा मेंटेलिटी बन चुका है कि वहाँ पर यूथ जो था वो केवल प्रोटेस्ट में जाकर के गालियाँ ही दे रहा था, वो गालियाँ नहीं थी, वो अंदर से निकला हुआ रेज था. आप ये तो वैसे ही बात हो गई कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता. तो वहाँ चर्चा तो होनी चाहिए ना. और ये चर्चा केवल इसलिए नहीं हो रही कि हमारी आदत हो गई कि हम तो गाली ही देते हैं. हमारी जो आदत है वो ये इसलिए है कि हमें वहाँ पर गुस्सा दिखाना था, गुस्सा इसी माध्यम से दिखा पा रहे थे. क्योंकि वहाँ पर ये कोई तरीका नहीं होता कि आप सोनम वांगचुक जी को वहाँ से उठा के लेकर चले जा रहे हो. क्या वो लाइन क्रॉस नहीं हो रही है? अगर आप वो लाइन क्रॉस करो तो हम भी लाइन क्रॉस करेंगे ही, क्योंकि लक्ष्मण रेखा अगर पार होती सरकार की ओर से तो हम भी रेखा को पार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं.
0: Okay. Anish, since you were there at the protest, are there lessons learned that, you know, this was largely leaderless? A lot of people were not able to control what was happening there. Are there lessons learned for the future that lines need to be drawn about general behavior?
2: So I'll tell you one. I don't think it was leaderless. I think if it was leaderless, you would not have seen every single protester disperse peacefully when the call to sort of call off the protest was given, right? So it has to be kept in mind that it was a protest which had discipline unlike any other. You had people dispersing peacefully, and anybody who was causing trouble was actually first confronted by protesters who were telling them to stay silent rather than by the police, right? But I think the lessons are many to be learned over here. I don't think you witnessed this kind of language before the 20th of July, right? All the slogans that you see were a response to lathis with sort of nails stuck on them being used to hit protesters. We were on the show that day and I was enraged, right? I said things on national television that I would not have said otherwise, because that was the reaction that was being provoked in young people, right? You were seeing your friends being beaten up. You were seeing people who had their skulls cracked open. You know, that's a very visceral reaction you have. On that day, I don't know what took over me either, right? I probably said things that I would not have said otherwise. So those remarks came as a response to that police brutality. But I think what's also very worrying is what happened to those young people who were abusing the Prime Minister. And I say this, that maybe you should not abuse the Prime Minister. You have the freedom of speech to do so, by the way. You're allowed to do it legally, but perhaps you shouldn't. But what happens when you do? People are coming into your Instagram DMs and saying, we will gang rape you. They're saying that 8 people will come to your house and beat you up. They're confronting people who cause these abusive slogans on the street and saying that tu zyada kar raha hai. There are right-wing troll accounts that are coming together and saying that we will gang up and beat these people up who abuse the Prime Minister. Is that okay? Is the response to somebody abusing the Prime Minister violence on the street? And if that response is not valid, then should the police not take action against those threatening violence?
0: Harshvardhan ji, ye gussa tha jo phoot pada.
3: नहीं पद्मजा, एक तो ये कि बहुत अच्छी शुरुआत की आपने. आपका नाम क्या है
4: सर? खुशी. आई एम फ्रॉम मेरठ.
3: बड़ा बढ़िया नाम है खुशी. मेरा नाम भी हर्ष है. एक्चुअली यही होना चाहिए. लेकिन जब इस तरह से गालियों में गुस्सा निकलना, इसको कहा जा रहा है कि ये जैन जी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो मुझे थोड़ी चिंता होती है. हम सब अपने समय में जैन जी ही रहे हैं. और मैं नहीं जानता हूँ इनमें से कितने लोगों ने स्टूडेंट मूवमेंट, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का भी हिस्सा रहा हूँ, स्टूडेंट मूवमेंट का भी हिस्सा रहा हूँ, लाठियां भी खाई हैं और पत्थर भी चलाए हैं. चलते हैं. ये कोई ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है जो बड़ी आजकल डिबेट हो रही है. लेकिन जो बात अभी खुशी ने कही, क्या कोई अपने माँ बाप को उन शब्दों में उस तरह से बात कर सकता है? वो वर्ड्स, वो स्लैंग, वो गालियां, वो एब्यूज, वो रेज हो सकता है क्या? वो गुस्सा हो सकता है क्या? और मुझे लगता है कि जब आप ये कहते हैं कि सोनम वांगचुक को उठा ले गए, तो भाई हाईकोर्ट का डायरेक्शन एक बार पढ़ लेते, थोड़ा पढ़ लिख के आना चाहिए. हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि उनकी इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक है, अब आपको उनके उनकी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना होगा. आप ये कह सकते हैं कि उनका तरीका ठीक था या नहीं था? तो आप उनको क्या गालियां दोगे? और जो पुलिस वाले वहां अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको जाके आप उनको हाँ रील बना रहे हो, आप उनको गालियां दे रहे हो, उस रील के व्यूज ले रहे हो, आपको मजे आ जा रहे हैं, लड़कियां वहां जाने क्या क्या कह रही हैं और किस तरह से कह रही हैं, उसके बाद वो कह रही विक्टिम कार्ड प्ले कर रही कि गलती हो गई मुझसे, अब हम रो रहे हैं. ये मतलब मुझे लगता है जैन जी को समझना पड़ेगा, एक सीरियस इशू बेस्ड मूवमेंट को रील भर के लिए करना ये बहुत खतरनाक
0: है. क्राउड लाइक दिस लाइंस गेट ब्लर्ड तहसीन, एंड यू नो गुस्सा किसी का होता है, निकलता किसी के ऊपर है. व्हाट वन कॉप हैज डन एब्सोल्युटली रॉन्ग, एक्शन शुड बी taken, but should that mean that at large others should be abused or there should be violence? Should there be a Lakshman Rekha Tehsil?
5: Padmaja, first of all, thank you. Thank you guys for coming here. You guys are wonderful, whether you're on this side, we're all on side of Team India. So wonderful for that. And more protests. Protests is what makes democracy strong. Said by the Chief Minister of Gujarat, Shri Narendra Modi ji. Not making this up. Check a

0: enough. Now let's come to the issue at hand.
1: You should remind this to people who are saying that he's a dictator. You're saying that he actually espouses the cause of democracy. I am a victim today of dictatorship
0: where two IPS officers moved me out of a place where you've taken my bites.
1: Hmm.
0: So I am a victim of that. My Instagram account as of now, which was absolutely a phenomenal account and was trending, has been suspended by the government, no reason given. Hmm. Now,
1: and yet here you are speaking in a very civil fashion,
0: which proves the point
1: that you don't need to be abusive in order to register your dissent.
0: Yes, but the problem, Padmaja, is that when you say it's the students versus the government or anybody versus the government has disproportionate powers versus these students.
1: Mm.
0: It has disproportionate powers. Therefore, the onus of proving wrongdoing is on the government, not on the students. The High Court order was very categorical that Sonam Wangchukji should be taken care of. At no point does the High Court order say that he should be picked up like a criminal and be put in a hospital. And in the first hearing, the High Court says, "Oh, if you're not under detention, you're still not allowed
1: to go." So you're saying, in the face of disproportionate power, rage, and this anger bursting forth is the only
0: Personally, I would not like abusive language. Personally, I would not like abusive language. The point is that when you have disproportionate power, it's not. Look, I just want to say one thing. You're either pregnant or not pregnant.
1: Mm.
0: You can't be half pregnant. Either Sonam Wangchuk was in contempt of the law and therefore should have been arrested, or he was not and should have been let go. This half measure, this new thing.
1: So we're talking about the language right now. You are saying when there's disproportionate power, Dr. Ranganathan, this is the response of a youth that just wants to be heard. Anand Ranganathan.
2: Hi, good evening, Padmaja, and good evening to my fellow panelists and all the brilliant, I dare say, Gen Z, although some of them look as young as me, but I look like a dinosaur right now. But can I just say that I'm a vegetarian dinosaur, I think Stegosaurus.
1: Hmm.
2: Look, three or four points. First of all, to the Gen Z and mostly the speakers, my fellow panelists, I think one of them is Gen Z, I suppose. You know, fortunately or unfortunately, Padmaja, I didn't read those books in school that these Gen Zs have been reading. And those books are textbook 101 of hypocrisy and double standards. Here is a photo. Let me show you. I hope the camera pans on it. This is a wonderful lady called Ketaki. She had a medical condition.
1: Hmm.
2: And when Anish says, well, everything should be allowed, free speech, she was thrown in jail for 40 days despite her medical condition. And her crime was to forward a Facebook post that people from Anish's party thought was mocking Shri Sharad Pawar.
1: Hmm.
2: This is the level of hypocrisy that goes on in our Gen Z.
1: Can we have Dr. Ranganathan on screen, please? Yes.
2: Yeah. Now let me come to my friend and elder brother Tehseen, who talks about right to protest. I take him back to, I think, 2008, 2009, when in one stroke, 8,500 protesters were charged with sedition by his government, Congress government. And what did Chidambaram call them? Anti-national. Years before BJP called them. So let's not have double standards. Let's stick to the issue. What is the issue? Should protest have been allowed? Yes, of course, legal, with permission, protest should have been allowed. I am a free speech absolutist. I don't mind anybody using or giving abuses because, as you rightly said and countered the first Gen Z who spoke about it, it is disappointing to have such views because where do you draw that line and who draws that line? Nobody is qualified enough to draw that line. We are still suffering because Nehru drew that line and he changed the first our constitution with the First Amendment.
1: Okay, one young man disagrees
2: right
1: with you here.
3: Just 10 seconds.
1: Just two points,
4: sir. Sir talked about hypocrisy and double standard. BJP se zyada hypocrisy kisi ke paas nahi hai. 70,000 crore ka ghotala karke deputy chief minister banate hain. Second, sir, you talked about is desh mein patrakaron ko midday meal par dikhane ke liye unko jail bhej diya jata hai. You are talking about hypocrisy. You tell me, ye BJP pehle exam leak ke bare mein baat karti thi ma'am ya nahi karti thi? Agar aap government mein nahi hai, aap uske bare mein, sir, ek second. Please, sir, ek second sun lijiye. Now, the second point you talked about line, sir, pata hai, AC hall mein baith ke is NDTV ke studio mein, na main samajh sakta hun student ka dard, aur na aap samajh sakte hain. Aap ek bar jaiye, jaake gaon mein dekhiye, ek baap apne bacche ko kaise padha raha hai. Main Mukherjee Nagar mein rehta hun, aap jaiye wahan dekhiye, bacche 5,000 ke kamron mein kaise reh rahe hain. Aur aap hypocrisy ki baat karte ho, double standard ki. Ek bhai agar suicide kar leta hai, uske bhai ko aap kaise line ke bare mein sikhayenge, sir? Nahi sikha sakte hain aap line ke bare mein. Aap agar student ke saath waisa behave karenge, जेल लगा के आप उनको मारेंगे, ठीक है, आप और आप कहते हैं कि लाइन की बात करो, वो लाइन आप भी नहीं क्रॉस कर।
1: देयर इज नो लाइन टू क्रॉस डॉक्टर रंगनाथन व्हेन देयर इज सो मच बबलिंग अंडर द सरफेस। डॉक्टर रंगनाथन,
2: पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जेन ज़ी इतनी अच्छी पॉलिटिकल स्पीच कैसे दे रहा है, क्या टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है क्या? नंबर वन,
1: दिस इज द रियल जेन ज़ी, दे आर दे नो देयर पॉलिटिकल व्यूज।
4: यू हैव दैट यू डोंट वांट द यूथ ऑफ दिस नेशन टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, दैट इज द प्रॉब्लम विद यू सर।
2: सुनो वन सेकंड,
1: लेट हिम आंसर। यस,
2: I showed you respect by hearing you. Please show some respect, not of my age, but hearing my point of view.
4: Sure,
2: number one, सबसे ज्यादा हिपोक्रेट तो मैं बीजेपी को मानता हूं। आपने ये किस एजेंडा के तहत ये मान लिया कि मैं बीजेपी को हिपोक्रेट नहीं मानता, पहली गलती वो। दूसरी गलती, जब मैं ड्रॉ द लाइन कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लाइन ड्रॉ होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए कह रहा हूं मेरे प्यारे जेन ज़ी थोड़ा ध्यान से पढ़ लो और सुन लो। मैं कह रहा हूं कौन लाइन ड्रॉ करेगा, कोई नहीं कर सकता लाइन ड्रॉ, क्योंकि जो मेरी तरफ से मैं अब्यूज समझ रहा हूं वो स्टेट सैंक्शन कर रहा है। एक स्क्रिप्चर है एक रिलीजन का जो कि मुझे गधा मानता है, सेटन मानता है, वर्मिन मानता है, मुझे एप मानता है, कहता है कि मुझे स्किन अलाइव होना चाहिए। okay. क्या वो अब्यूज नहीं है? लेकिन okay. वो अलाउड है, वो मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर
0: रहा।
1: On the language,
2: और ये, और let, ये let, सबसे,
1: let me just ये understand सबसे, this, Dr. Ranganathan.
2: Yeah,
1: in a protest, can somebody set the standards for what is acceptable, what is not acceptable?
2: Absolutely not.
1: Okay.
2: Anything is allowed according to me as far as free speech is concerned with four caveats. Yeah. Do I need to mention those? I will mention them later. But let me come to the third point with the young person with the mic was speaking, because it's very important.
1: Okay.
2: He's going down.
0: Anand, we got it. Listen. Let me make it very clear to all of you. Congress was terrible. That's why you guys voted out. That's why your parents kicked them out. There is nothing called hypocrisy. Just because something has gone wrong doesn't give the license to any government to do wrong to you.
1: Okay.
0: Any of this whataboutery should end.
5: मैं ये कह रहा हूँ कि inquiry set up कराइए, पुलिस हो, बच्चे हो, गुंडे हो, अपराधी हो, जो भी गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो।
0: कौन करेगा inquiry?
5: मैं बता रहा हूँ, बीच में नहीं बोलते, नहीं तो फिर डिसproportionate हो जाएगा, ऐसे नहीं करते।
0: अच्छा, फिर कौन करेगा?
5: जब आप ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज कैसे यूज करेंगे, तो जो अभी सौरभ दास या तिलचट्टा पार्टी के दूसरे लोग कह रहे हैं कि वो लैंग्वेज जो हम नहीं सुन सकते हैं, वो लैंग्वेज हम नहीं बोलेंगे, बस एक लाइन का फॉर्मूला, रेड लाइन यहाँ ड्रॉ हो सकती है। दूसरा, जब हम ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को उठा ले जाने पर हम गुस्सा हुए, तो सोनम वांगचुक से भी एक बार पूछ लेना चाहिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने वो सफदरजंग गए, फिर मेदांता गए, और उन्होंने जो अपील की है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी इस पर नजर होगी कि सरकार एजुकेशनल रिफॉर्म करती है नहीं। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि इतना बड़ा आंदोलन है ये, मतलब हाल के दिनों का सबसे बड़ा मूवमेंट है, और जो इसका इशू था एजुकेशनल रिफॉर्म, वो गायब हो गया है, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही।
6: नहीं,
5: रील्स पर बात हो रही है, एब्यूजिव लैंग्वेज पर बात हो रही है, दूसरी चीजों पर बात हो रही है, क्या? और अच्छा है आप पॉलिटिशियन बन जाइए, देश को नए नौजवान पॉलिटिशियंस की जरूरत है।
1: okay.
5: लेकिन क्या ये पॉलिटिशियंस बनकर सचमुच इशू पर बात करेंगे, या वही करेंगे जो यहाँ किया?
1: So, one very famous actor has said, please don't respect buddhe just because they are senior citizens. Some look like they have developed bhakti dementia. It makes them delusional that they can take on the young when they can't even kato a night without five trips to the bathroom. Don't automatically respect them because of their age. They were just born before you. Let them earn it. Leave some food on a newspaper at the corner of the road at a safe distance. Don't engage. So we are already at a point where we are saying that buddhe don't deserve respect. And who will decide who is this buddhe who doesn't deserve respect? And is it a free-for-all now? It's all accepted.
7: Ma'am, I think as being a constitutional state, hum sabhi, like beyond the politics of BJP and Congress, sir, as a Gen Z and as a student, I would say ki जो भी राइट्स हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं, एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर सुप्रीम कोर्ट, एवरीथिंग हैज लिमिटेशंस, एंड वो लिमिटेशन होनी चाहिए। लेकिन लिमिटेशन कौन सी होनी चाहिए? लिमिटेशन होनी चाहिए हमारे खुद के मॉरल ग्राउंड्स पे, यानी जो हम किसी को बोल रहे हैं, क्या वो खुद हम सुन पाएंगे अपने ऊपर? दूसरी ओर, मैं इस प्रोटेस्ट का पार्ट रहा 23 जुलाई को, परंतु इस प्रोटेस्ट का पार्ट रहते हुए कुछ ऐसे स्लोगन्स मिले हैं घोड़े पर, ना जाने कौन कौन से ऐसे ऐसे स्लैंग और ऐसे ऐसी गालियां दी गई है जिसको कि हम सुनना नहीं चाहेंगे, जो कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में दी जाए तो हम उसको सीधा बोलेंगे कि ये इंस्टीट्यूट बिल्कुल अभद्र है, लेकिन वहां पर छात्र है। लेकिन इसके कारण क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं डिफाइन है कि छात्र क्या होते हैं, छात्र का कोई डेफिनेशन नहीं है। तो कोई भी छात्र बनकर छात्र के प्रोटेस्ट में शामिल होता है, कुछ भी अभद्रता का व्यवहार करता है, अंततः उसको बोला जाता है कि हम छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं।
1: तो ये
6: there's a very famous statement जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने कही है, और वो ये है कि एक कंट्री जो है वो स्ट्रिक्ट लॉज पे नहीं चल सकता, उसको एक मॉरल बैकिंग, मोरालिटी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है. बट एट द सेम टाइम वॉट इज मोरालिटी नाउ, एंड इट इज फ्रॉम बोथ द साइड, बी फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोटेस्टर्स और बी फ्रॉम द साइड ऑफ द पुलिस. द क्वेश्चन इज कि लैंग्वेज, जब लैंग्वेज की हम बात करें तो लैंग्वेज इज नॉट जस्ट टर्मिनोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट द ब्रुटैलिटी जो हम यूज कर रहे हैं. सो बोथ द थिंग्स कम इन टू प्ले. And there will be a chain of reactions. अगर आज मैं किसी के बारे में, for example, I support a government और मैं उसको कुछ कहती हूँ, हाँ चार लोग मुझे आकर के और कहेंगे आप कैसे अपने anger को channelize करो, ये बहुत ज़्यादा important है.
1: Also, very quickly, this gentleman here, then I will go back to Dr. Ranganathan and Anish over.
8: Yes. Hi, I'm Anurag Dwivedi. I'm a MBA finance student. So respect is like a communication. It's a two-way thing. आप दोगे आप पाओगे. और ये जो अभी कमेंट आया था कि बुड्ढों ने कुछ ऐसा मतलब बोल दिया, तो इस देश के बुड्ढे वैसे भी जेन जी इसको कॉकरोच बोल रहे हैं और वो पछता रहे हैं. सो लेट्स बी प्रूडेंट अबाउट दैट, दैट रेस्पेक्ट शैल बी अ टू वे थिंग, नॉट अ वन.
1: I mean, who said it? The Chief Justice.
9: Cockroach नहीं बोला है.
1: So the Chief Justice of India used that word. But if why should people walking on the road be called budde who don't deserve respect? What did those old men do to be called budde who don't deserve respect?
8: No, I said that respect is a two-way thing. If a genry is respecting you, it's the duty of the elders to respect us back. But the elders are not respecting us, then how that you expect that we should...
1: Okay, that young lady there.
6: Ma'am, additionally, I would like to... I think yahan pe jitne log baithe, everybody would agree with the fact, as sir also, you know, lashed out about that, ki we don't take accountability for every person's individual opinions. Exactly that. If I talk about it, ki agar protest mein, if I went to the protest and I did not say anything that was offensive or heinous, so there are there might be, you know, antisocial elements in the protest, but not everybody in the protest is doing the same thing. So why is the entire generation responsible for what is happening over there? Gali di gayi hai to har insaan ne to nahi di hai. Additionally, agar yes sir,
10: I no sorry go ahead.
1: Yeah, go on.
10: I want to say one very simple thing because I agree with you. Please see इसमें से कितने स्लोगन्स अब्यूसिव्स थे और कितने स्लोगन वास्तव में हुए थे.
1: Also,
10: like, also, let's be honest, yeah, the abusive slogans were a small fraction of the slogans raised. There was no abusive slogan raised from the stage. What Gen Z was doing was having fun. They're doing like Subway Surfer reels and making those reels and mocking the government, and those go more viral. Any smart person with a camera knows कि अगर आप गाली दोगे तो आपकी रील की रीच लिमिट हो जाएगी. तो वो गाली देते नहीं है, आप ढूंढ-ढूंढ के उनको ढूंढ रहे हो कि अच्छा चलो गाली दे दी हम खुश हो गए.
11: I have a contradiction to the point I've made. जैसे सर मैंने आपको बोला कि हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, बट बीइंग एल्डर पीपल, ना आई एम नॉट ड्रॉइंग द एज ब्रैकेट है, बट बीइंग एल्डर पीपल, डोंट यू थिंक अगर किसी ने वहां पे गाली दी तो आपको उसका रिस्पांस एक अच्छी तरह से करना चाहिए था. इफ सम पर्सन इन एनी एक्शन गेव अब्यूज देयर, तो आपको नहीं लगता आपको उनको समझाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मॉब टू देयर प्लेसेस और सेंडिंग देम थ्रेट्स? दैट इज माय कॉन्ट्रडिक्शन. आई इन स्टार्टिंग सेड दैट आई making a generalized statement that abuse is wrong from both the sides.
1: Just a question, wahi to keh rahe hai na, now it is being said that don't check us, this is the way we will speak from here on.
11: It's not about don't check us. I am asking the question to sir, that if we are making the boundary, then don't you think that if Gen Z did something wrong to aapko unko acche se samjhana chahiye tha? If you are coming on the same ground as us, pehla aap humko bol rahe hain ki aapne gaali di, that is wrong, I am also accepting it, but aapko nahi lagta aapko,
1: don't file FIRs.
11: Exactly.
1: If they are abusing, don't come after them with
11: tell us and what
10: also
11: we did wrong.
10: Accountability, no, one second, I just have to say one thing. Accountability has to be
9: जो भी ये बात कर रहा है, हम सबके घर में जेन जी बच्चे है भाई, उनकी बात हम सुनते भी है, उनको सुनाते भी है, उनसे समझते भी है, लेकिन गालियां सुनना सुनाना ये तो लैंग्वेज नहीं
1: है. लेकिन पीपल गेट देयर बैक अप व्हेन देयर आर पीपल लाइक कंगना रनौत. यू नो आई कोटेड द एग्जांपल ऑफ ऋचा चड्ढा, बट देन ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम यू हैव कंगना रनौत हू इज सेइंग दिस इज जनरेशन गटर. हाउ डज दिस हेल्प? जो दो तीन बच्चे हैं वो आप और भी,
9: किसी को भी आप पूरी जनरेशन को एक जिसको कहते हैं ना कि ब्लैंकेट आपने बोल दिया कि ये गटर हो गई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है. लेकिन इसका दूसरा पहलू है, अगर कंगना ने मतलब मैं उसको नहीं कह सकता क्योंकि टीवी चैनल एंकर से बातचीत हुई, लेकिन अगर वही बात कही कि आप जो सुनना नहीं चाहते हो, आप कपड़े उतारने की आजादी, गाली देने की आजादी, तो उसकी रेड लाइन कहां ड्रॉ होगी? फिर तो दोनों तरफ होगा, एक तरफ नहीं हो सकता है ना.
0: नो नो वन सेकेंड, I'm again coming to who has disproportionate power. Where does accountability set in? All of this today is being put in as if the students are on the equal footing with the government. Let me ask you, Padmaja, when those 20 students committed suicide in 2024, I am not asking Dharmendra Pradhan. The then NTA chief is today principal secretary Chhattisgarh. Where was accountability set? Is 2 years not enough to set accountability? This guy's 5,000 rupees apartment, he must be staying with five other people. His life is a struggle. His life is a struggle because your kids go abroad to study. You can tell them that your life is a struggle. Which Neta's kids are struggling like this? This is not right. They are the future of our country. They are struggling. They have suffered. And it is the duty of it is the duty of the government to be empathetic. You can't come and use disproportionate force and say, oh, but bro, we are equal. No, we are not equal. The power rests with you.
1: Okay, Dr.
10: I have to just say one more thing here, right? Let's take accountability from those abusing PM Modi. But when will we take accountability from Sachin Sharma who ordered the lathi charge and the tear gas? When will we take accountability from the police officer who ordered pellet guns to be used in the national capital?
1: It should be done now. No, which is why the Supreme Court.
10: Why has it not been done now?
1: Because
10: the government should resign then.
0: Is the Supreme Court running
10: the point of the government? How can you not take action?
1: Okay, just to be factually, correct, accountability should be sought, and which is why there are multiple pleas before the Supreme Court, which is now asking. It doesn't help to shout me down. Which is why the Supreme Court is saying there should be an independent investigation, which should see whether there was violence on the part of the police and whether there was violence on part of the protesters.
10: Until then,
1: both are going to be investigated.
10: Until then, the government should have the grace to suspend the officers who took this action.
1: Okay. How can people have trust Dr. Ranganathan when there is no accountability? And now we've moved beyond the language question also, right? Now we have come to that we had no option to pick up the bricks because nobody was listening to us. And now you are coming after us and turning us into criminals, Dr. Ranganathan.
2: Look, by all means, the people who gathered there, Padmaja, alongside you are brilliant, as you started by saying. But can I say, I'm so disappointed by some of the statements coming out. एक कह रहा है जब तक आप एक कमरे में ना रहो 10 लोगों के साथ आपको सफरिंग नहीं पता चलेगी. ये लॉजिक ये वही है कि जब तक मैं खेत में जाता रहूं, जब तक मेरे पास घर पे टॉयलेट ना हो मुझे टॉयलेट की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी. जब तक मेरे सर पे एप्पल ना गिरे मुझे पता नहीं चलेगा कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज है. यही चीज पॉलिटिशियंस यूज करते हैं. एंड एज फार एज अनीश गवांडे सेइंग ही इज नॉर्मलाइजिंग इलीगैलिटी. The Jantar Mantar protest, there was no lathi charge there because that was a legally sanctioned protest. Anish, do not be a riot monger, please. You are going to be a politician. When the march happened, the march was illegal and there were three stages of police action. The first action was section 144 was imposed. The second was tear gas was happening. The third was lathi charge. And the fourth was when less lethal force. Aap wahan pe the kya? Were you the police officer sanctioning it? Were you in charge of
1: Anish?
2: You were one in the mob. You were not the police.
10: No, I was in the mob.
2: Whose problem it was to take care of the situation. Don't talk like somebody who doesn't believe in rule of law or logic or science. I don't know which subjects you study.
10: I have been to multiple protests in my life. This was the first time when I was in the mob. And I had a lathi charge being directed towards me and tear gas being lobbed towards me. Sir, you have to listen now. Without any advance warning, the police is supposed to issue 3 warnings before tear gas is fired. The police did not do so.
2: Who said lathi
10: charges, sir? In lathi charges, the lathi is not supposed to go above the knee. The lathi is supposed to immobilize you. It is not supposed to go all the way up to people's necks. So clearly, this is a failure of the Delhi police's training. This is the failure of any kind of de-escalationary procedure on the Delhi police's part.
2: Says an IPS officer, Anish Gawande.
10: Sir, please see Meera Borwankar. Meera Borwankar, one of the most senior IPS officers in this country, has come out and said that what the Delhi police did was unacceptable.
2: You marched illegally, yes or no?
10: No, this was a failure of policing, sir.
1: Okay, young man.
2: Come up with facts or get a fact checker out because sir, I can't counter each one of these lies.
12: With due respect, sir, पहली बात तो ये है कि चिल्लाने से सत्य बदलने वाला नहीं है, पहली चीज. दूसरी बात जो अनीश सर ने कही कि वहां पर आप कैसे जो प्रोटेस्ट में देखे थे कैसी लैंग्वेजेस थी, अब्यूसिव लैंग्वेज, उसको आप साइड कर लीजिए. बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट भी थे वहां पर, स्लोगन्स भी थे कि कुछ पुछू प्लीज रिजाइन कर दो ना, इसको कोई नहीं बोल रहा है, कितने प्यार से हम बोल रहे थे, ठीक है. दूसरी बात रही बात अकाउंटेबिलिटी की, सर, तो अकाउंटेबिलिटी इस देश में,
1: सो लेट्स जस्ट कम बैक टू द मेन इशू. वी आर टॉकिंग अबाउट द वायलेंस.
12: इट इज द मेन इशू. अकाउंटेबिलिटी इज द मेन इशू.
1: मेन इशू इज द वायलेंस. इन द वायलेंस, yes, there were many people saying kuchu puchu,
12: yes,
1: but there were also many people who were, one, with a criminal background, two, on camera they are engaging in violence,
12: and there were and few three, people jo non uniform hokar ke bachcho ko maar rahe the, wo log kaun the.
1: Three, remember that the very act of marching towards parliament was an act of breaking the law, so who is accountable for that?
12: Accountable,
1: the law was broken.
12: उस वहां पर पुलिस थी, पुलिस जो है सीधे लाठी चार्ज कर रही है, उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं हो रही है और कोई भी कार्य हो रहा है उसके लिए कोई अकाउंटेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ अकाउंटेबिलिटी हमारी ओर से जारी
2: है। वाज द लॉ ब्रोकन और नॉट
12: सर? पहले जो हमारी जो लॉ की बात,
2: वाज द लॉ ब्रोकन
12: सर? लॉ किसके लिए बना हुआ है? लॉ हमारे लिए बना हुआ है ना
2: दिस गाय
12: सर?
2: वाज द लॉ ब्रोकन यस और नो?
12: लॉ को मतलब फॉलो करना केवल हमारा ही दायित्व है या फिर वो स्टेट की, थोड़ा उसके बारे में कोई जवाबदेहिता नहीं मांगेंगे सर? दूसरी बात तो ये है कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपद धर्म की, हम सर ये आपद धर्म आ गया था हमारे ऊपर क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे सामने दोस्तों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, सर फट गया है सर। क्या जो इस्तीफा दिया गया उससे उसका मरहम पट्टी हो जाएगा? उससे मरहम पट्टी नहीं होने वाला। एक और बात है, छोटी सी बात यहाँ पे,
1: अकाउंटेबिलिटी
12: इसका मतलब कि पुलिस ही फेल की है, स्टेट ही फेल की है वहाँ पर।
1: दोस्त लॉ मेंटेन करने के लिए ही तो पहले बैरिकेड तोड़ दी,
12: बिना किसी
1: फिर आप और आगे बढ़े,
12: पेलेट गन
1: से टियर गैस चली,
12: वार्निंग
1: फिर आप और आगे बढ़े, यू केम क्लोज टू पार्लियामेंट,
12: जो है पेलेट गन चला रहे हो बिना किसी वार्निंग के। एक चीज मैम, यहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी, छोटी सी बात है, डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। यहाँ पर हमारे पूर्व मंत्री जी ने इस्तीफा दिया और क्या कहा कि हम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, हम जो है इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे देश के यूथ का जो टाइम बर्बाद हो रहा है, हमारे देश के यूथ का सर, एक मिनट सर, छोटी पूरी बात
9: कंफ्यूजन हो,
12: हमें यहाँ पर जो
9: जो मार्च था उससे पहले 20 दिनों तक जंतर मंतर पर पीसफुली वही पुलिस, उनको एक तरह से कहें कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की। जिस दिन ये पार्लियामेंट मार्च था, हम सब लोग टीवी पर थे और हमें लग रहा था कि 3 घंटे तक जिस तरह से मॉब पार्लियामेंट के इर्द गिर्द था और जिस तरह से वो सिक्योरिटी लैपसेस से बिल्कुल वहां पर दिल्ली पुलिस फेल हुई, और हम तो कहते हैं कि उसको पहले मैनेज करना चाहिए था, लेकिन जब आप पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ गए, और मैं फिर कह रहा हूं 3 घंटे 4 घंटे तक कोई लीडरशिप नहीं थी सीजेपी की, कोई बताने वाला नहीं था बच्चे कहां जाएंगे, और उसके बाद जब ये सब हुआ उसके बाद ये घटना, फिर आप नहीं बता सकते कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, पहले किसने क्या किया, पहले पत्थर चले या पहले लाठी चली। और मुझे लगता है कि जब हम ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस बनाम बच्चे, ये ऐसा नहीं है, इसको समझना पड़ेगा।
1: First, give your name and what do you do?
13: Okay, so I'm Ananjay, I'm going to be pursuing my bachelor's at IIT Madras, and I want to point out that कि लोग बोल रहे हैं कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, I accept that, but the point is कि पुलिस जो एरिया है जंतर मंतर से लेकर संसद तक का, दैट इज वेरी हाईली प्रोटोकॉल्ड एरिया, वहां पे आप ऐसे रेंडमली टहलने नहीं जा सकते, दैट इज वेरी, मैं मानता हूँ जंतर मंतर की उनके पास परमिशन थी, बट जंतर मंतर से आगे का उन्होंने क्या रिटर्न में गवर्नमेंट से लेटर लिया था या नहीं लिया? एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट से लेटर लिया भी था तो पुलिस वालों के ऊपर, मानता हूँ उन्होंने गलत किया, बट एट द सेम टाइम पुलिस वालों के पास ऑर्डर्स थे, मतलब जिन्होंने ऑर्डर के अगेंस्ट किया उनको मैं मान लो उन्हें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बट अगर उनकी नौकरी है यार, सरकारी नौकरी के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, उनके पास अगर कुछ ऑर्डर्स आए हैं तो दे आर फॉलोइंग देयर ऑर्डर्स, तो जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं दे आर सपोज्ड टू अकाउंटेबल।
0: लेट मी टेक हिज पॉइंट फॉरवर्ड। Only narrative we've heard in the news channels, except NDTV, other news channels, is that there were all these goons here, somebody's a POSCO accused, somebody's a rape accused, somebody's so-and-so criminal, etc. That's the narrative we've heard. It's clearly put out by the government. Now, question one. I agree with what he said, that this is the most sensitive geography in the history of this country. What were the police doing? Were they snoozing? What was the home ministry doing? I'm not asking the honorable home minister. Why did you switch off internet? Because the entire protest was running on an internet. Do you not have common sense? It's basic common sense. Point number two. This is the Delhi that's seen 2 riots, 1 bomb blast under the same home ministry. Who will take accountability? And last thing, when the honorable ex-education minister resigned and he came to parliament, I want each one of you to see the garlanding and the hero's welcome he yes. got. 20 kids died. 20 kids died. His daughter studies abroad. I'm not comparing it. He got a hero's welcome. If this is accountability, sorry, accountability, wo hona chahiye tha. Dharmendra Pradhan ji ka waisa swagat. Aap kya inko murkh samajhte hain, sarkar?
9: मुश्किल ये है कि आपने हमें सुना ही नहीं, मैं तो पहले से ही पहले दिन से मैं रिजिग्नेशन मांगने वालों में हूँ, पहले दिन से मैंने कहा कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात बार बार तहसीन कह रहे हैं कि उनके बच्चे अब्रॉड जाते हैं, उनके बच्चे अब्रॉड जाते हैं, अरे इस मूवमेंट का सबसे बड़ा नेता अभिजीत दीपके अब्रॉड से पढ़ के आ रहा है, थोड़ा तो यार तहसीन सोचा करो, कुछ भी बोल
12: देते
9: हो,
1: let me ask a larger question. Is this now a model that we are going to see replicated? And are we now all resigned to the fact that now the pressure group will come from the streets and not from the parliament or the legislative assemblies of India?
14: Good morning, sir. My name is Arpan Kumar Giri and I am a Delhi Vishwavidyalaya. मेरा ये कहना है कि सर जैसे हम आप लोग कह रहे हैं कि अचानक से पुलिस आई और लाठी चार्ज कर दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं तो अभिजीत दुब के एयरपोर्ट पर आते हैं, बुक दिखाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस उन्हें पूरा अलाउ करती है, अभिजीत दुब को लगता है कि उन्हें गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं देगी, 6 जून को उनको परमिशन मिल जाता है, अभिजीत दुब को लगता है कि यह लॉन्ग टाइम परमिशन के लिए जाएगी, सॉरी हंगर, तो वो भी मिल जाता है परमिशन, फिर

0: सोनम वांगचुक जी आते हैं आंगर स्ट्राइक करते हैं, उन्हें लगता है कि वो भी एक दो दिन में हटा दिए जाएंगे, उन्हें भी नहीं होता है। जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि हमें इनका
1: ऑर्डर नहीं,
0: हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि मुझे इनका डेली मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, ये देखो
1: नहीं, नहीं वो नहीं था, सॉरी नो ही इज रॉन्ग,
0: लेट मी कंप्लीट,
1: बोलिए आप, बोलिए
0: कि तो उसके लिए अगर
1: ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर बोलिए ना, क्या था,
0: उन्हें मेडिकल रिपोर्ट चाहिए थी, ठीक है,
1: हॉस्पिटल ले जाना,
0: चूंकि चूंकि एक मिनट, जो कि पीआईएल फाइल हुई थी, पीआईएल फाइल हुई कि
1: ऑर्डर क्या था,
0: ऑर्डर ये था कि मुझे मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, जो पीआईएल फाइल
2: वही था, स्टेट से भी हो सकती थी,
1: वो तो स्टेट से हो सकती थी।
0: मेरा सवाल ये है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी सरकार की मांगते हो, ठीक है, तो आप अकाउंटेबिलिटी उन बच्चों के लिए क्यों नहीं मांग रहे हो, अभिजीत
1: दुखे ने बच्चे न्याय मेरे पास बोलो,
0: जो मार खाए जिन्होंने अनकाउंटेबिलिटी विकसित बहकाने में आगे मोबिलाइज करने के लिए प्रोटेस्ट में। दूसरी बात, पार्लियामेंट कोई पिकनिक बेस नहीं है कि आप बिना एनओसी के आ जाते हो घूमने के लिए यहाँ पे, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो, एक मिनट, आप कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हो, तो आपको ये भी मानना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज हैं उनके ऑर्डर्स को कम से कम फॉलो कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज ने आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट दिया, आपने 25-26 दिन पूरा प्रोटेस्ट किया, आपको जब मार्च करना था पार्लियामेंट, बस उसके लिए आपको एनओसी नहीं मिला और आप उसके लिए आकर वायलेशन कर लेते
3: हैं। इट इज ऑल्सो इनकम्बेंट ऑन द प्रोटेस्टर्स एंड द ऑर्गेनाइजर्स टू फॉलो द लॉ एंड द बेसिक पॉइंट that Dr. Ranganathan was making, that in marching to parliament beyond Jantar Mantar, the law was broken, Anish.
4: Ma'am, Padmaja, was the march to parliament announced on the 6th of June? Was it announced in the weeks after? Why was the march to parliament necessary? Kyunki ye sarkar sunna bhul gayi hai na? 31 दिन वहां पे दिन रात किसी को बैठना पड़ता है, आप संसद 200-300 मीटर दूर रखते हो, आपको तब तक आवाज सुनाई नहीं देती है, तो आवाज सुनाई देने के लिए किसी को आपके दरवाजे तक पहुंचना पड़ता है।
3: But no, then why march to parliament? No, tomorrow why? Barge inside this Prime Minister's residence.
4: Tomorrow somebody will barge into your house,
3: Anish.
4: Bigger security threat is marching to the Prime Minister's residence.
3: Dr. Ranganathan.
4: Parliament is the temple of democracy and that was the march. And Padmaja, let me tell you this. Let me also say this. For many of you, I was part of the Nirbhaya protests. And a lot of us raised our voice against how the Congress government shut down the Nirbhaya protests.
0: Even then,
4: main ek hi second bolunga aapko, tabhi bhi. जब इंडिया गेट पर लाखों लोग आ गए थे, उनको वाटर कैनन से हटाया गया था, पेलेट गन इस्तेमाल करने की बदतमीजी,
0: एक शॉर्ट टाइम,
4: देश में इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी देश, इस देश में
0: नहीं सर, मैं सिर्फ दो लाइन बोलूंगा, ज्यादा नहीं। आपने कहा कि सरकार सुनना भूल गई थी, तो मैं बता दूं कि ये वही सरकार है जिसने फार्मर्स के लिए 11 बार कॉन्वर्सेशन भी करी थी और उसके बाद हमें फार्मर्स बिल को रिपील करने के लिए, ठीक है,
2: मैं ये कहना चाहता हूं आपसे,
3: डॉक्टर रंगनाथन, यस।
5: Yeah, so, you know, I need to focus on not just the voters, the Gen Z voters, but whom they're going to be voting for in the future. And I hope my good friend Anish doesn't mind, they're going to possibly be voting for him. What he's saying is, ki hamari baat nahi suni, isliye humne law ko toda. Ye wohi log hain jo, this is textbook anarchy. Are we living in a democracy or are we living in an anarchy? What he is saying is, हमारी बात नहीं सुन रहे, इसलिए पार्लियामेंट में बात सुने, इसलिए हमने इलीगली मार्च कर लिया दैट एंटायर एरिया। एंड आई वॉन्ट टू आस्क, देर वॉज अ स्टूडेंट आउट हियर हु मेड द पॉइंट दैट द एंटायर एरिया इज अ सिक्योर जोन। आई एम हैजर्डिंग अ गेस आउट हियर, आई डोंट नो हु दैट स्टूडेंट इज, बट यू टेक द माइक टू हिम, आई एम श्योर ही इज आइदर स्टडिंग साइंस और इंजीनियरिंग। इसमें रैशनल थॉट की जरूरत है, प्लीज आस्क।
3: He's a law student. Why do you have such a low opinion of law students? Yes.
1: He can argue both.
3: So let me ask you this. Okay, just a second. I again want to come back to the question. Are the laws now going to be decided on the streets? Is the Jantar Mantar model now the acceptable model moving forward?
6: First of all, when the previous exam papers leaked, no accountability was held. So, and it is the right of the people to protest. Why are we saying that we should have choices? We can have both. We can go to the courts and we can protest as well. And another, we are not talking.
3: Let me ask you this. Tomorrow you give a competitive exam. Somebody is not happy with you qualifying. If I manage to get 5,000 people, aapka naam kya hai? यश कल को मैं कहूँ यश का एडमिशन कैंसिल कर दो, मैं ज्यादा डिजर्विंग थी, मैं नहीं अग्री करती कि यश को एडमिशन मिलना चाहिए, आपका एडमिशन रद्द हो जाना
1: चाहिए।
3: arguments and causes, but they do not manage to mobilize people, so they are unheard. And unfortunately, that is the precedent that has been set.
1: That's the point of movement building.
3: That legitimate
1: should be built.
7: I want to make a point.
1: That's why you have to
3: make a point. In a democracy, if you manage to mobilize enough people, it is a legitimate point. Go on.
7: See, excuse me. मैं ये सवाल करना चाहूंगा, 2014 में बीजेपी की सरकार आती है, 2015 में प्री नीट का पेपर लीक होता है, एंड नाउ वी आर लिविंग इन 2026, 15 से लेके 26 तक कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात की? जब तक हम संसद तक नहीं पहुंचे, कौन सा ऐसा नेता था, प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री, जिसका कोई भी बयान आया, ट्वीट आया, या किसी ने कुछ भी रिजाइन की बात की? तो जब तक अगर हम संसद पर नहीं जाते हैं, अगर भगत सिंह ने लंदन में जाके उस बम को नहीं फेंका होता, तो किसे पता लगता कि भगत सिंह क्या कर सकता है? तो दिस इज वेयर द रेवोल्यूशन स्टार्ट्स।
3: विल द सीजेपी प्रोटेस्ट हैपन नेक्स्ट एट कर्नाटका एंड Punjab, when is it happening? Because Congress is protesting. I have to say, the Congress is protesting in Parliament, and yesterday Charanjit Singh Channi protested in Punjab also. Yeah. When is the CJP planning to protest in Punjab?
4: I certainly hope that they'll protest in Punjab soon. But what I will say is that what has unfolded over the last few weeks should worry the government. If I were the Home Minister and the Prime Minister, I would call for an all-party meeting, because there is a fundamental disconnect between this government and young people. If you feel like you are not being listened to, if you feel like actions are being taken without you being consulted, then there is going to be a democratic trust deficit that is very difficult for any government, for any political party to overcome.
3: Okay, tell me your name, what's your point?
8: So I'm Ronak Chaudhary, and currently I'm a class 10th student and the youngest among all of here people here.
4: So are you Gen Alpha now?
8: Yeah. So yes, so my question is to the Congress. See, accountability cannot be selective, right? So main aapke samne kuch facts and figures rakhna chahti hu. 2005 railway recruitment board ka exam leak hota hai, no minister resigned, no accountability taken. 2011 mein AIEEE ka paper leak hota hai, no union minister resigned, no accountability taken. Rajasthan pre medical test 2008 में लीक होता है, अगेन नो अकाउंटेबिलिटी टेकन, नो यूनियन मिनिस्टर रिजाइंड।
1: नो लिसन, आई एब्सोल्युटली थिंक ऑल गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव लेट डाउन यू पीपल, व्हाई शुड आई डू व्हाट अबाउटरी? देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन, इट इज योर लाइफ, योर फ्यूचर। यू थिंक द कर्नाटक एजुकेशन मिनिस्टर इज गुड? ही इज टेरिबल। द पॉइंट इज, आई होप कॉकरोच प्रोटेस्ट, इफ दे डोंट, it is not the responsibility of cockroach to protest.
4: They
1: are students. It is the responsibility of the opposition there to bring down the Congress government. And please do it. I will support you. I think where it is wrong. Let's learn to stop this whataboutery. If people are dying, if people are losing out, we must.
7: Panmaja.
3: I think she is only saying, I demand equal accountability of everyone.
1: I think
3: they
1: should. I think you should. And I think, sir, ek second, ek hi line, sir. I think you should. I think you're absolutely right. I don't even demand of cockroach. I think the opposition in Karnataka must do it. And if they don't do it, they are failing you. I think the Congress should back up. I totally agree with
9: you. Panmaja, ये कमाल हो गया। पहली बच्ची है जिसने ना तो abusive language की बात की, सिर्फ issues की बात की, और तुरंत ये वॉट अबाउटरी करने लगे। वॉट अबाउटरी नहीं है भाई, फैक्ट्स को रखना, ये वॉट अबाउटरी कैसे? और मैं कह रहा हूं बहुत सीरियस है ये। किसी ने अभी कहा कि अगर शायद अनीश ने कहा, बिल्कुल मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर डेमोक्रेसी में किसी को भी लगे, कोई भी एक जनरेशन को लगे कि अगर गवर्नमेंट उनकी नहीं सुन रही है, तो ये सरकार के लिए चिंता की बात है। झारखंड में हजारों बच्चे प्रदर्शन कर रहे, झारखंड में, देश के दूसरे राज्यों। सवाल यहां ये, क्या हम ओवरऑल एजुकेशन रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं? और जो सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम है किसी एजुकेशन मिनिस्टर ने पेपर लीक पर रेजिग्नेशन दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिफॉर्म होंगे।
8: नहीं, ऑफ कोर्स दैट इज अ पॉइंट, बट जब अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है अकाउंटेबिलिटी लेके, आई नो दे हैव नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू बिल, दे जस्ट अमेंडेड द बिल एंड दे आर प्रपोजिंग इट इन द पार्लियामेंट, बट आई बिलीव दैट द ओपोजिशन जो अपोज कर रही थी, अब तो पास हो गया खैर, बट जो अपोज कर रही थी, एंड वन ऑफ द मिनिस्टर सेड ओपोजिशन का काम है अपोज करना, तो यू गाइज आर रियली ओल्डर देन मी, ठीक है? तो बट हमने क्लास 8 की सिविक्स बुक में पढ़ा था, डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन द ओपोजिशन एक्ट्स एज अ वॉचडॉग ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट एज अ ऑब्स्टिकल टू आवर प्रोग्रेस, राइट?
1: So can I give one?
3: Very interesting point. I think more people want to come in. Just a second, then I'll go to Dr. Ranganathan. One point.
10: Just one point. Ma'am, two things. First, when you talk about blame, the biggest problem of India is, ma'am, we play blame game. We like history. Then we will talk about Karnataka, Punjab. अरे जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको तो सुधार लो, हम नेक्स्ट पे भी आ जाएंगे. इट इज द ड्यूटी ऑफ मीडिया टू आस्क क्वेश्चन, नॉट द गवर्नमेंट. हम सुधार लेंगे उस चीज को. पहले आज जिसकी बात कर रहे हैं उसको तो सुधार लेते हैं मैम, वो बहुत.
11: दिस इज लाइक

0: पंच के बाद आप खुद ही हाथ ऊपर करके सेलिब्रेट कर रहे थे, वो स्ट्रेटजी के बारे में बताइए। ओके, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना चाह रहे थे।
1: हाँ जी, क्योंकि रूबी वाइट भी बहुत अच्छी बॉक्सर है, तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी टक्कर की बाउट होने वाली है, लेकिन मतलब मैं तब भी तो स्कोर कर रही थी, तो मैं हाथ ऊपर कर रही थी दिखाने के लिए कि हाँ मैंने स्कोर किया है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उससे आता है।
2: Feeling very good, even proud also, because the sacrifice of all athletes family, they are showing their result here only. Even our federation did very much for us, ISAI, TOPS, Khelo India. So I just want to say thanks to them, because all of their hard work, the result is here.
0: आपकी काफी सारी emotions उभर के आ रही थी during the event, and जब national anthem बज रही थी, तो please explain.
2: Actually, मेरा last के 2024 थोड़ा अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं पेरिस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, और 2025 में मेरा सर्जरी हुआ, तो मैं हंगर था कि आई जस्ट वांट टू गो एंड प्ले कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स एंड ऑल द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स वेयर आई गेट द चांस टू प्ले माय नेशनल एंथम इन माय वेट कैटेगरी।
3: ये सब ये कोचेज का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट और हमारे कंट्री इंडिया, इस सभी की वजह से आज मैं सीनियर में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल आया।
0: फाइनल के बारे में बताइए कि कमबैक भी करना पड़ा, क्राउड सपोर्ट काफ़ी था, तो फाइनल का कैसे चल रहा था?
3: हाँ जी, मैंने मेरी जो तीन फाइट बाउट हुई हैं, तीनों बाउटों में मैंने कमबैक किया है, तो मुझे जैसे फर्स्ट अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे अगर फर्स्ट राउंड स्प्लिट में चला जाता है तो कूल माइंड से रह के मेंटलिटी के ऊपर भी काम करते हैं हम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने कमबैक कर लिया था आराम से।
4: US President Donald Trump says he will order American forces to hold off on new strikes against Iran. Well, we'll get you that report and much more, but for now, slipping into a short break.

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
6: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: in the parliament precincts have grievously demeaned the Hindu faith and has insulted the sentiments of crores of Hindu devotees. Will Rahul Gandhi and his coterie dare to abuse other faiths and commit blasphemy in the most debased manner in which they have humiliated Hindu faith? It is very clear that Rahul Gandhi's protest was a farcical protest and it was deliberately intended to ridicule and mock the Hindu Dharma.
1: जो भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव पर और बाकी नेताओं पर एफआईआर करा रही है सनातन धर्म के अपमान के लिए, वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों के की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए।
2: राहुल गांधी पप्पू यादव जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक ठीक ही था। बीजेपी का ये कायदा है, कोई जिसको विरोध कुछ करता तो एक एफआईआर लगा देता, ये एफआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल जो किया है ठीक किया है।
3: राम मंदिर की चोरी का मुद्दा उठाना यह अपराध है क्या? चोरी किसने की? बीजेपी के लोगों ने की। 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर में। 500 करोड़ की दान पत्र चोरी हो गए, बड़े मछली छूट गई, छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया, और हमने ये मुद्दा उठाया संसद में और संसद के बाहर, तो हमारे ऊपर एफआईआर लॉज होता है, शर्म नहीं आती है लोगों को?
4: क्या कहूँ, इस पर ऐसी आती है। देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हुआ चंदा चोरी का, उस पर तो एफआईआर कराने में इन्हें इतना टाइम लगा है? और मंचन तो सब चीज़ों का होता है, उन पर किस बात की एफआईआर कर रहे हैं भाई? किस बात की एफआईआर है, मुझे समझ में नहीं आया। आप चंदा चोरी हुआ है ये तो सारा का सारा सामने आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। और अब तो ये कुछ भी करें इनका जवाब राम जी खुद देंगे, जो ये कर रहे हैं ना, इनका जवाब राम जी देंगे इनको।
5: मैं भी हिंदू हूँ और करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई। भावनाएं उस दिन आहत हुई जिस दिन चोरी और डकैती हुई। डकैती हुई, चोरी छोटा शब्द है, और चोरी किसके निज़ाम में हुई, डकैती किसके निज़ाम में? जिनके नाम से गाने बनवाए गए थे, जिनको बड़ा दिखाते हुए रामलला को छोटा दिखाया गया था, जो फलाने को राम को लाए हैं, आज गाना बनवाओ नया, जिन्होंने चंदा खाया है उनका क्या करेंगे? तो आप भावनाएं वहां आहत होती है। और मैं तो कभी कभी ताज्जुब करता हूं कि इस देश में अगर आज कबीर वापस आ जाए, उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी मजहब को नहीं छोड़ा, किसी की रूढ़िवादिता को नहीं छोड़ा, किसी के करप्शन को नहीं छोड़ा। कबीर पे UAPA लगता इस होम मिनिस्टर के दौर में, कबीर जेल में होते बिना ट्रायल के।
6: देखिए, ये बीजेपी के लोग सनातन धर्म को न मानते न सम्मान करते। ये बीजेपी के लोग केवल और केवल सनातन को वोटों के लिए, नोटों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसको हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते। और जो भगवान प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चंदा और चढ़ावा की चोरी हुई है, डकैती पड़ी है, उसको हम लोग बेनकाब कर रहे हैं और करेंगे।
7: A sensational FIR has uncovered an alleged Jaish e Mohammed linked espionage and terror conspiracy, with investigators claiming that the network had international links, targeted VIPs and even plotted attacks and political assassination. NDTV has accessed the FIR. Two arrests were made in two different states. Accused Arpita was nabbed from Jharkhand, and prime accused Hamim alias Hamim Fugo was arrested in Bardhaman. The investigation points to an alleged international footprint with multiple WhatsApp numbers linked to Pakistan. United States, United Kingdom and Mexico now under scrutiny. FIR names Hamim Mandal, Hamim Fugo, alleging he ran an espionage network, received instructions for Pakistan and maintained several foreign linked WhatsApp connections. Investigators claim that the network gathered intelligence on VIPs and key installations, recruited locals and planned kidnappings, murder and other crimes. The FIR alleges Hamim and Arpita worked together using a honey trap to target Suvendu Adhikari as part of a larger conspiracy, with fears of his assassination as the West Bengal chief minister. It is also alleged that the conspirators planned to disguise themselves as police personnel, infiltrate the CJP protests at Jantar Mantar,

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना।
2: आप कहाँ से हैं?
1: हरियाणा। कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े। वंदे भारतम डॉट
5: यू नो, हियर ऑन टेक 360 वी लाइक टू प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। We tell you about tech because we review it extensively. We get access that most people around the world don't get. And we want to share that gift with you. So in the spirit of transparency and accountability and credibility, we want to tell you that we use the best tech to even get this show and put it together for you. We edit on Apple devices, on MacBooks and iMacs and Mac Studios. We obviously shoot the show very often on the Sony Alpha cameras because we want that level of production quality. And then we use all sorts of AI tools to make things better and enhance them. But we don't use AI avatars. I'm always here wherever I am at ground zero where the tech

0: किस बात की FIR है मुझे समझ में नहीं आया। आप चंदा चोरी हुआ है ये तो सारा का सारा सामने आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। और अब तो ये कुछ भी करें इनका जवाब राम जी खुद देंगे, जो ये कर रहे हैं ना इनका जवाब राम जी देंगे इनको।
1: मैं भी हिंदू हूँ और करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई। भावनाएं उस दिन आहत हुई जिस दिन चोरी और डकैती हुई। डकैती हुई, चोरी छोटा शब्द है, और चोरी किसके निज़ाम में हुई, डकैती किसके निज़ाम में, जिनके नाम से गाने बनवाए गए थे, जिनको बड़ा दिखाते हुए रामलला को छोटा दिखाया गया था, जो फलाने को राम को लाए हैं, आज गाना बनवाओ नया, जिन्होंने चंदा खाया है उनका क्या करेंगे। तो आप भावनाएं वहां आहत होती है। और मैं तो कभी कभी ताज्जुब करता हूं कि इस देश में अगर आज कबीर वापस आ जाए, उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी मजहब को नहीं छोड़ा, किसी की रूढ़िवादिता को नहीं छोड़ा, किसी के करप्शन को नहीं छोड़ा। कबीर पे UAPA लगता इस होम मिनिस्टर के दौर में, कबीर जेल में होते बिना ट्रायल के।
2: देखिए ये BJP के लोग सनातन धर्म को न मानते न सम्मान करते। ये BJP के लोग केवल और केवल सनातन को वोटों के लिए, नोटों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसको हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते। और जो भगवान प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चंदा और चढ़ावा की चोरी हुई है, डकैती पड़ी है, उसको हम लोग बेनकाब कर रहे हैं और करेंगे।
3: A sensational FIR has uncovered an alleged Jaish-e Mohammed linked espionage and terror conspiracy, with investigators claiming that the network had international links, targeted VIPs and even plotted attacks and political assassination. NDTV has accessed the FIR. Two arrests were made in two different states. Accused Arpita was nabbed from Jharkhand, and prime accused Hamim alias Hamim Fugo was arrested in Bardhaman. The investigation points to an alleged international footprint with multiple WhatsApp numbers linked to Pakistan, United States, United Kingdom and Mexico now under scrutiny. FIR names Hamim Mandal, Hamim Fugo, alleging he ran an espionage network, received instructions for Pakistan and maintained several foreign-linked WhatsApp connections. Investigators claim that the network gathered intelligence on VIPs and key installations, recruited locals and planned kidnappings, murder and other crimes. The FIR alleges Hamim and Arpita worked together using a honey trap to target Suvendu Adhikari as part of a larger conspiracy, with fears of his assassination as the West Bengal chief minister. It is also alleged that the conspirators planned to disguise themselves as police personnel, infiltrate the CJP protests at Jantar Mantar and attack the demonstrators.
4: देखिए ये जो उग्रवादी पकड़ा गया है इसको लेकर इंक्वायरी चल रही है, आगे और भी खुलासा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो उस समय जंतर मंतर में चला, छात्रों के आक्रोश को कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए उसको इस्तेमाल करने का काम किया है। दे हैव यूज द इमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट। तो हमारी सरकार इसको इंक्वायरी कर रही है और इसके तह तक जाएगी।
5: Arrest of suspected terrorist Hamim Mandal led this investigation team to Kolkata's Howrah Spilkhana area, where we are currently situated on. What we can tell you that this particular location, which is at the 7 Alam Mystery Lane, this particular rented place is was the place where Hamim Mandal and his elderly father used to running a hoshiari business, that what we are given to told that the government business were used to be running from this particular place. Since couple of days, this particular place is being locked, and suspectedly that the prime accused and the owner of this place, Hamim Mandal's father and others, they fled this premises. As you can see that these are the belongings they used to carry over here. For past 9 months, this particular place used to be used as a government factory, but what we do not know whether it was a shield behind the entire plot. Police has already arrested Hamim Mandal and his close associate, his girlfriend from Jharkhand. Now this investigation led investigator to this particular place, which is located in Howrah, and many plot is been busted by the investigating team.

0: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
1: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों के की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए।
1: राहुल गांधी पप्पू यादव जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक ठीक ही था। बीजेपी का ये कायदा है, कोई जिसको विरोध कुछ करता तो एक FIR लगा देता, ये FIR से कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल जो किया है ठीक किया है।
2: राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठाना ये अपराध है क्या? चोरी किसने की? बीजेपी के लोगों ने की। 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर में, 500 करोड़ की दानपेटियां दान पत्र चोरी हो गए, बड़े मछली छूट गई, छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया, और हमने ये मुद्दा उठाया संसद में और संसद के बाहर, तो हमारे ऊपर FIR लॉज होता है? शर्म नहीं आती लोगों को?
3: क्या कहूँ, इस पर ऐसी आती है। देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हुआ चंदा चोरी का, उस पर तो FIR कराने में इन्हें इतना टाइम लगा है? और मंचन तो सब चीज़ों का होता है, उन पर किस बात की FIR कर रहे हैं भाई? किस बात की FIR है मुझे समझ में नहीं आया। आप चंदा चोरी हुआ है ये तो सारा का सारा सामने आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। और अब तो ये कुछ भी करें इनका जवाब राम जी खुद देंगे, जो ये कर रहे हैं ना, इनका जवाब राम जी देंगे इनको।
4: मैं भी हिंदू हूँ और करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई। भावनाएं उस दिन आहत हुई जिस दिन चोरी और डकैती हुई। डकैती हुई, चोरी छोटा शब्द है, और चोरी किसके निज़ाम में हुई, डकैती किसके निज़ाम में? जिनके नाम से गाने बनवाए गए थे, जिनको बड़ा दिखाते हुए रामलला को छोटा दिखाया गया था, जो फलाने को राम को लाए हैं, आज गाना बनवाओ नया, जिन्होंने चंदा खाया है उनका क्या करेंगे? तो आप भावनाएं वहां आहत होती है। और मैं तो कभी कभी ताज्जुब करता हूं कि इस देश में अगर आज कबीर वापस आ जाए, उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी मजहब को नहीं छोड़ा, किसी की रूढ़िवादिता को नहीं छोड़ा, किसी के करप्शन को नहीं छोड़ा। कबीर पे UAPA लगता इस होम मिनिस्टर के दौर में, कबीर जेल में होते बिना ट्रायल के।
5: देखिए, ये बीजेपी के लोग सनातन धर्म को न मानते न सम्मान करते। ये बीजेपी के लोग केवल और केवल सनातन को वोटों के लिए, नोटों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसको हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते। और जो भगवान प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चंदा और चढ़ावा की चोरी हुई है, डकैती पड़ी है, उसको हम लोग बेनकाब कर रहे हैं और करेंगे।
6: A sensational FIR has uncovered an alleged Jaish Mohammed linked espionage and terror conspiracy, with investigators claiming that the network had international links, targeted VIPs and even plotted attacks and political assassination. NDTV has accessed the FIR. Two arrests were made in two different states. Accused Arpita was nabbed from Jharkhand, and prime accused Hamim alias Hamim Fugo was arrested in Bardhaman. The investigation points to an alleged international footprint with multiple WhatsApp numbers linked to Pakistan. United States, United Kingdom and Mexico now under scrutiny. FIR names Hamim Mandal, Hamim Fugo, alleging he ran an espionage network, received instructions for Pakistan and maintained several foreign-linked WhatsApp connections. Investigators claim that the network gathered intelligence on VIPs and key installations, recruited locals and planned kidnappings, murder and other crimes. The FIR alleges Hamim and Arpita worked together using a honey trap to target Suvendu Adhikari as part of a larger conspiracy, with fears of his assassination as the West Bengal chief minister. It is also alleged that the conspirators planned to disguise themselves as police personnel, infiltrate the CJP protests at Jantar Mantar and attack the demonstrators.
7: देखिए, जो उग्रवादी पकड़ा गया है इसको लेकर इंक्वायरी चल रही है, आगे और भी खुलासा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो उस समय जंतर मंतर में चला, छात्रों के आक्रोश को कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए उसको इस्तेमाल करने का काम किया है। दे हैव यूज द इमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट। तो हमारी सरकार इसको इंक्वायरी कर रही है और इसके तह तक जाएगी।
8: The arrest of suspected terrorist Hamim Mandal led this investigation team to Kolkata's Howrah Spilkhana area, where we are currently situated on. What we can tell you that this particular location, which is

0: तो हमारे ऊपर एफआईआर लॉज होता है, शर्म नहीं आती है लोगों को?
1: क्या कहूँ, इस पर ऐसी आती है। देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हुआ चंदा चोरी का, उस पर तो एफआईआर कराने में इन्हें इतना टाइम लगा है? और मंचन तो सब चीज़ों का होता है, उन पर किस बात की एफआईआर कर रहे हैं भाई? किस बात की एफआईआर है मुझे समझ में नहीं आया। आप, चंदा चोरी हुआ है ये तो सारा का सारा सामने आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। और अब तो ये कुछ भी करें, इनका जवाब राम जी खुद देंगे, जो ये कर रहे हैं ना, इनका जवाब राम जी देंगे इनको।
2: मैं भी हिंदू हूँ और करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई। भावनाएं उस दिन आहत हुई जिस दिन चोरी और डकैती हुई। डकैती हुई, चोरी छोटा शब्द है, और चोरी किसके निज़ाम में हुई, डकैती किसके निज़ाम में? जिनके नाम से गाने बनवाए गए थे, जिनको बड़ा दिखाते हुए रामलला को छोटा दिखाया गया था, जो फलाने को राम को लाए हैं, आज गाना बनवाओ नया। जिन्होंने चंदा खाया है उनका क्या करेंगे? तो भावनाएं वहां आहत होती है। और मैं तो कभी कभी ताज्जुब करता हूं कि इस देश में अगर आज कबीर वापस आ जाए, उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी मजहब को नहीं छोड़ा, किसी की रूढ़िवादिता को नहीं छोड़ा, किसी के करप्शन को नहीं छोड़ा। कबीर पे UAPA लगता इस होम मिनिस्टर के दौर में, कबीर जेल में होते बिना ट्रायल के।
3: देखिए, ये BJP के लोग सनातन धर्म को न मानते न सम्मान करते। ये BJP के लोग केवल और केवल सनातन को वोटों के लिए, नोटों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसको हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते। और जो भगवान प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चंदा और चढ़ावा की चोरी हुई है, डकैती पड़ी है, उसको हम लोग बेनकाब कर रहे हैं और करेंगे।
4: A sensational FIR has uncovered an alleged Jaish e Mohammed linked espionage and terror conspiracy, with investigators claiming that the network had international links, targeted VIPs and even plotted attacks and political assassination. NDTV has accessed the FIR. Two arrests were made in two different states. Accused Arpita was nabbed from Jharkhand, and prime accused Hamim alias Hamim Fugo was arrested in Bardhaman. The investigation points to an alleged international footprint with multiple WhatsApp numbers linked to Pakistan, United States, United Kingdom and Mexico now under scrutiny. FIR names Hamim Mandal, Hamim Fugo, alleging he ran an espionage network, received instructions for Pakistan and maintained several foreign-linked WhatsApp connections. Investigators claim that the network gathered intelligence on VIPs and key installations, recruited locals and planned kidnappings, murder and other crimes. The FIR alleges Hamim and Arpita worked together using a honey trap to target Suvendu Adhikari as part of a larger conspiracy, with fears of his assassination as the West Bengal chief minister. It is also alleged that the conspirators planned to disguise themselves as police personnel, infiltrate the CJP protests at Jantar Mantar and attack the demonstrators.
5: देखिए, जो उग्रवादी पकड़ा गया है इसको लेकर इंक्वायरी चल रही है, आगे और भी खुलासा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो उस समय जंतर मंतर में चला, छात्रों के आक्रोश को कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए उसको इस्तेमाल करने का काम किया है। दे हैव यूज द इमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट। तो हमारी सरकार इसको इंक्वायरी कर रही है और इसके तह तक जाएगी।
6: Arrest of suspected terrorist Hamim Mandal led this investigation team to Kolkata's Howrah Spilkhana area, where we are currently situated on. What we can tell you that this particular location, which is at the 7 Alam Mystery Lane, this particular rented place is was the place where Hamim Mandal and his elderly father used to running a hushyari business that would be given to told that the government business were used to be running from this particular place. Since couple of days, this particular place is being locked, and suspectedly that the prime accused and the owner of this place, Hamim Mandal's father and others, they fled this premises. As you can see that these are the belongings they used to carry over here. For past 9 months, this particular place used to be used as a government factory, but what we do not know whether it was a shield behind the entire plot.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद।
5: Hello and welcome. You're watching NETV 24/7. I'm Anusha Sonia. Quick check of the headlines. Politics over Kaveri water row. DMK hits out at Chief Minister Vijay, says he's scared to hold all-party meet. Karnataka BJP chief writes to Vijay, seeks cooperation. DKS holds an all-party meet in Karnataka. Opposition slams FIR against Rahul Gandhi over Chanda Chori skit in Parliament. BJP says Rahul hurt Hindu Aastha. Opposition asks, didn't the scam at Ram Temple hurt the sentiments of the Hindu community? A major terror probe breakthrough in Bengal. The STF claims arrested accused Hamid Mondal was linked to Pakistan-based handlers with alleged plans to target Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari and carry out sabotage at the Jantar Mantar protests. And a scuffle broke out at Pappu Yadav's Delhi residence after a shoe was hurled at him over his Chanda Chori protest. The independent MP makes big claims that the alleged attacker brandished a knife and attempted to kill him. Nasha Mukt Bharat push begins. Prime Minister launches anti-drug campaign. 100-week drive against drug abuse. Over 1 crore youth take pledge against drugs. And flood fury continues to batter Assam. The death toll has climbed to 82. More than 78 lakh people have been affected across the state. Relief and rescue operations underway. India delivers a blockbuster performance at the Commonwealth Games, clinching 16 medals in a single day. A historic boxing haul powered the surge as the country tally rose to 39 medals, with India climbing to fourth in the standings. The political battle over the parliament skit on the alleged Ram Temple donation theft is now intensifying. An FIR has been registered in Varanasi against the leader of opposition Rahul Gandhi, along with MPs Pappu Yadav and Avdhesh Prasad, over allegations of hurting religious sentiments during the protests. BJP has launched a blistering attack accusing Congress of mocking Sanatan Dharma and insulting crores of Hindu devotees. The opposition has hit back in unison. The Congress says that exposing alleged theft of devotees' donation cannot be treated as a crime, while Shiv Sena, UBT and the TMC have backed Rahul Gandhi, calling the protest justified, accusing the BJP of using FIRs to silence political opponents, saying that the actual Chanda Chori has hurt the Hindu sentiments.
6: घटिया घिनौना और आपराधिक कृत्य था। संतों का अपमान करना, राम भक्तों का अपमान करना, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो नहीं देना चाहिए, और उसके लिए देश की संसद के लिए जो चुन करके गए हैं सदस्य, उनके द्वारा, और उसमें भी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश यादव और श्रीमती डिंपल यादव जैसे तमाम ऐसे सांसदों ने, जो पप्पू यादव के जो एक स्वांग या ढोंग जो कह लीजिए करने का उन्होंने प्रयास किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, संतों को अपमानित करने का काम किया, राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में मैं भर्त्सना भी करता हूँ। और ऐसे मामले में FIR होनी ही चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।
7: The repulsive drama enacted by Rahul Gandhi and his coterie in the parliament precincts have grievously demeaned the Hindu faith and has insulted the sentiments of crores of Hindu devotees. Will Rahul Gandhi and his coterie will they dare to abuse other faiths and commit blasphemy in the most debased manner in which they have humiliated Hindu faith? It is very clear that Rahul Gandhi's protest was a farcical protest, and it was deliberately intended to ridicule the and mock the Hindu Dharma?
8: जो भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव पर और बाकी नेताओं पर FIR करा रही है सनातन धर्म के अपमान के लिए, वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों के की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए।
9: राहुल गांधी पप्पू यादव जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक ठीक ही था। बीजेपी का ये कायदा है, कोई जिसको विरोध कुछ करता तो एक FIR लगा देता, ये FIR से कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल जो किया है ठीक किया है।
10: राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठाना ये अपराध है क्या? चोरी किसने की? बीजेपी के लोगों ने की। 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर में, 500 करोड़ की दान पत्र चोरी हो गए, बड़े मछली छूट गई, छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया, और हमने ये मुद्दा उठाया संसद में और संसद के बाहर, तो हमारे ऊपर FIR लॉज होता है? शर्म नहीं आती है लोगों को?
11: क्या कहूँ, इस पर ऐसी आती है। देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हुआ चंदा चोरी का, उस पर तो FIR कराने में इन्हें इतना टाइम लगा है? और मंचन तो सब चीज़ों का होता है, उन पर किस बात की FIR कर रहे हैं भाई? किस बात की FIR है मुझे समझ में नहीं आया। आप चंदा चोरी हुआ है ये तो सारा का सारा सामने आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। और अब तो ये कुछ भी करें इनका जवाब राम जी खुद देंगे, जो ये कर रहे हैं ना, इनका जवाब राम जी देंगे इनको।
12: मैं भी हिंदू हूँ और करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई। भावनाएं उस दिन आहत हुई जिस दिन चोरी और डकैती हुई। डकैती हुई, चोरी छोटा शब्द है, और चोरी किसके निज़ाम में हुई, डकैती किसके निज़ाम में? जिनके नाम से गाने बनवाए गए थे, जिनको बड़ा दिखाते हुए रामलला को छोटा दिखाया गया था, जो फलाने को राम को लाए हैं, आज गाना बनवाओ नया, जिन्होंने चंदा खाया है उनका क्या करेंगे? तो भावनाएं वहां आहत होती है। और मैं तो कभी कभी ताज्जुब करता हूं कि इस देश में अगर आज कबीर वापस आ जाए, उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी मजहब को नहीं छोड़ा, किसी की रूढ़िवादिता को नहीं छोड़ा, किसी के करप्शन को नहीं छोड़ा। कबीर पे UAPA लगता इस होम मिनिस्टर के दौर में, कबीर जेल में होते बिना ट्रायल के।
13: देखिए, ये बीजेपी के लोग सनातन धर्म को न मानते न सम्मान करते हैं। ये बीजेपी के लोग केवल और केवल सनातन को वोटों के लिए, नोटों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसको हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते। और जो भगवान प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चंदा और चढ़ावा की चोरी हुई है, डकैती पड़ी है, उसको हम लोग बेनकाब कर रहे हैं और करेंगे।
5: A sensational FIR has uncovered an alleged Jaish e Mohammed linked espionage and terror conspiracy, with investigators claiming that the network had international links, targeted VIPs and even plotted attacks and political assassination. NDTV has accessed the FIR. Two arrests were made in two different states. Accused Arpita was nabbed from Jharkhand, and prime accused Hamim alias Hamim Fugo was arrested in Bardhaman. The investigation points to an alleged international footprint with multiple WhatsApp numbers linked to Pakistan, United States, United Kingdom and Mexico now under scrutiny. FIR names Hamim Mandal, Hamim Fugo, alleging he ran an espionage network, received instructions for Pakistan and maintained several foreign-linked WhatsApp connections. Investigators claim that the network gathered intelligence on VIPs and key installations, recruited locals and planned kidnappings, murder and other crimes. The FIR alleges Hamim and Arpita worked together using a honey trap to target Suvendu Adhikari as part of a larger conspiracy, with fears of his assassination as the West Bengal chief minister. It is also alleged that the conspirators planned to disguise themselves as police personnel, infiltrate the CJP protests at Jantar Mantar and attack the demonstrators.
14: देखिए, जो उग्रवादी पकड़ा गया है इसको लेकर इंक्वायरी चल रही है, आगे और भी खुलासा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो उस समय जंतर मंतर में चला, छात्रों के आक्रोश को कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए उसको इस्तेमाल करने का काम किया है। दे हैव यूज द इमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट। तो हमारी सरकार इसको इंक्वायरी कर रही है और इसके तह तक जाएगी।
15: Arrest of suspected terrorist Habib Mandal led this investigation team to Kolkata's Howrah Spilkhana area, where we are currently situated on. What we can tell you that this particular location, which is at the 7 Alam Mystery Lane, this particular rented place is was the place where Habib Mandal and his elderly father used to running a hushyari business that would be given to told that the government business used to be running from this particular place. Since couple of days, this particular place is being locked, and suspectedly that the prime accused and the owner of this place, Habib Mandal's father and others, they fled this premises. As you can see that these are the belongings they used to carry over here. For past 9 months, this particular place used to be used as a government factory, but what we do not know whether it was a shield behind the entire plot. Police has already arrested Habib Mandal and his close associate, his girlfriend from Jharkhand.

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right, and Center.
0: Hard facts.
1: War struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine.
3: In France. In Italy.
1: At Srinagar.
3: I am Mr. France.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
4: Hello and welcome. You're watching NETV 24/7. I'm Anusha Sonia. Quick check of the headlines. Politics over Kaveri water row. DMK hits out at Chief Minister Vijay, says he's scared to hold all-party meet. Karnataka BJP chief writes to Vijay, seeks cooperation. DKS holds an all-party meet in Karnataka. Opposition slams FIR against Rahul Gandhi over Chanda Chori skit in Parliament. BJP says Rahul hurt Hindu Aastha. Opposition asks, didn't the scam at Ram Temple hurt the sentiments of the Hindu community? A major terror probe breakthrough in Bengal. The STF claims arrested accused Hamid Mondal was linked to Pakistan-based handlers with alleged plans to target Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari and carry out sabotage at the Jantar Mantar protests. And a scuffle broke out at Pappu Yadav's Delhi residence after a shoe was hurled at him over his Chanda Chori protest. The independent MP makes big claims that the alleged attacker brandished a knife and attempted to kill him. Nasha Mukt Bharat push begins. Prime Minister launches anti-drug campaign. 100-week drive against drug abuse. Over 1 crore youth take pledge against drugs. And flood fury continues to batter Assam. The death toll has climbed to 82. More than 78 lakh people have been affected across the state. Relief and rescue operations underway. India delivers a blockbuster performance at the Commonwealth Games, clinching 16 medals in a single day. A historic boxing haul powered the surge as the country tally rose to 39 medals, with India climbing to fourth in the standings. The political battle over the parliament skit on the alleged Ram Temple donation theft is now intensifying. An FIR has been registered in Varanasi against the leader of opposition Rahul Gandhi, along with MPs Pappu Yadav and Avdhesh Prasad, over allegations of hurting religious sentiments during the protests. BJP has launched a blistering attack accusing Congress of mocking Sanatan Dharma and insulting crores of Hindu devotees. The opposition has hit back in unison. The Congress says that exposing alleged theft of devotees' donation cannot be treated as a crime, while Shiv Sena, UBT and the TMC have backed Rahul Gandhi, calling the protest justified, accusing the BJP of using FIRs to silence political opponents, saying that the actual Chanda Chori has hurt the Hindu sentiments.
5: घटिया घिनौना और आपराधिक कृत्य था. संतों का अपमान करना, राम भक्तों का अपमान करना, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो नहीं देना चाहिए, और उसके लिए देश की संसद के लिए जो चुन करके गए हैं सदस्य, उनके द्वारा और उसमें भी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश यादव और श्रीमती डिंपल यादव जैसे तमाम ऐसे सांसदों ने जो पप्पू यादव के जो एक स्वांग या ढोंग जो कह लीजिए करने का उन्होंने प्रयास किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, संतों को अपमानित करने का काम किया, राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में मैं भर्त्सना भी करता हूँ. और ऐसे मामले में FIR होनी ही चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए.
6: The repulsive drama enacted by Rahul Gandhi and his coterie in the parliament precincts have grievously demeaned the Hindu faith and has insulted the sentiments of crores of Hindu devotees. Will Rahul Gandhi and his coterie will they dare to abuse other faiths and commit blasphemy in the most debased manner in which they have humiliated Hindu faith? It is very clear that Rahul Gandhi's protest was a farcical protest, and it was deliberately intended to ridicule the and mock the Hindu Dharma.
2: जो भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव पर और बाकी नेताओं पर एफआईआर करा रही है सनातन धर्म के अपमान के लिए, वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों के की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए।
3: राहुल गांधी पप्पू यादव जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक ठीक ही था। बीजेपी का ये कायदा है, कोई जिसको विरोध कुछ करता तो एक एफआईआर लगा देता, ये एफआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल जो किया है ठीक किया है।
7: राम मंदिर की चोरी का मुद्दा उठाना ये अपराध है क्या? चोरी किसने की? बीजेपी के लोगों ने की। 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर में। 500 करोड़ की दान पेटिया दान पत्र चोरी हो गए, बड़े मछली छूट गई, छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया, और हमने ये मुद्दा उठाया संसद में और संसद के बाहर, तो हमारे ऊपर एफआईआर लॉज होता है? शर्म नहीं आती है लोगों को?
8: क्या कहूँ, इस पर ऐसी आती है। देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हुआ चंदा चोरी का, उस पर तो एफआईआर कराने में इन्हें इतना टाइम लगा है? और मंचन तो सब चीज़ों का होता है, उन पे किस बात की एफआईआर कर रहे हैं भाई? किस बात की एफआईआर है मुझे समझ में

0: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
1: Now watching NDTV 24/7.
2: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
3: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig.
2: Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
0: When stories have impact.
4: Padmasad Joshi, managing editor and primetime anchor.
0: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
2: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
6: ब्रेडस्टिक आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
7: हरियाणा।
6: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
7: डेढ़ महीने पे।
6: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
8: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Anusha Sonia. Quick check of the headlines. Politics over Kaveri water row. DMK hits out at Chief Minister Vijay, says he's scared to hold all-party meet. Karnataka BJP chief writes to Vijay, seeks cooperation. DKS holds an all-party meet in Karnataka. Opposition slams FIR against Rahul Gandhi over Chanda Chori skit in Parliament. BJP says Rahul hurt Hindu Aastha. Opposition asks, didn't the scam at Ram Temple hurt the sentiments of the Hindu community? A major terror probe breakthrough in Bengal. The STF claims arrested accused Hamid Mondal was linked to Pakistan-based handlers with alleged plans to target Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari and carry out sabotage at the Jantar Mantar protests. And a scuffle broke out at Pappu Yadav's Delhi residence after a shoe was hurled at him over his Chanda Chori protest. The independent MP makes big claims that the alleged attacker brandished a knife and attempted to kill him. Nasha Mukt Bharat push begins. Prime Minister launches anti-drug campaign. 100-week drive against drug abuse. Over 1 crore youth take pledge against drugs. And flood fury continues to batter Assam. The death toll has climbed to 82. More than 78 lakh people have been affected across the state. Relief and rescue operations underway. India delivers a blockbuster performance at the Commonwealth Games, clinching 16 medals in a single day. A historic boxing haul powered the surge as the country tally rose to 39 medals, with India climbing to fourth in the standings. The political battle over the parliament skit on the alleged Ram Temple donation theft is now intensifying. An FIR has been registered in Varanasi against the leader of opposition Rahul Gandhi, along with MPs Pappu Yadav and Avdhesh Prasad, over allegations of hurting religious sentiments during the protests. BJP has launched a blistering attack accusing Congress of mocking Sanatan Dharma and insulting crores of Hindu devotees. The opposition has hit back in unison. The Congress says that exposing alleged theft of devotees' donation cannot be treated as a crime, while Shiv Sena, UBT and the TMC have backed Rahul Gandhi, calling the protest justified, accusing the BJP of using FIRs to silence political opponents, saying that the actual Chanda Chori has hurt the Hindu sentiments.
9: घटिया घिनौना और आपराधिक कृत्य था। संतों का अपमान करना, राम भक्तों का अपमान करना, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो नहीं देना चाहिए, और उसके लिए देश की संसद के लिए जो चुन करके गए हैं सदस्य, उनके द्वारा और उसमें भी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश यादव और श्रीमती डिंपल यादव जैसे तमाम ऐसे सांसदों ने जो पप्पू यादव के जो एक स्वांग या ढोंग जो कह लीजिए करने का उन्होंने प्रयास किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, संतों को अपमानित करने का काम किया, राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में मैं भर्त्सना भी करता हूँ। और ऐसे मामले में FIR होनी ही चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।
7: The repulsive drama enacted by Rahul Gandhi and his coterie in the parliament precincts have grievously demeaned the Hindu faith and has insulted the sentiments of crores of Hindu devotees. Will Rahul Gandhi and his coterie will they dare to abuse other faiths and commit blasphemy in the most debased manner in which they have humiliated Hindu faith? It is very clear that Rahul Gandhi's protest was a farcical protest and it was deliberately intended to ridicule and mock the Hindu Dharma.
10: जो भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव पर और बाकी नेताओं पर एफआईआर करा रही है सनातन धर्म के अपमान के लिए, वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों के की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए।
11: राहुल गांधी पप्पू यादव जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक ठीक ही था। बीजेपी का ये कायदा है, कोई जिसको विरोध कुछ करता तो एक एफआईआर लगा देता, ये एफआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल जो किया है ठीक किया है।
12: राम मंदिर की चोरी का मुद्दा उठाना यह अपराध है क्या? चोरी किसने की? बीजेपी के लोगों ने की। 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर में। 500 करोड़ की दान पत्र चोरी हो गए, बड़े मछली छूट गई, छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया, और हमने ये मुद्दा उठाया संसद में और संसद के बाहर, तो हमारे ऊपर एफआईआर लॉज होता है? शर्म नहीं आती है लोगों को?
13: क्या कहूँ, इस पर ऐसी आती है। देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हुआ चंदा चोरी का, उस पर तो एफआईआर कराने में इन्हें इतना टाइम लगा है? और मंचन तो सब चीज़ों का होता है, उन पर किस बात की एफआईआर कर रहे हैं भाई? किस बात की एफआईआर है मुझे समझ में नहीं आया। आप, चंदा चोरी हुआ है ये तो सारा का सारा सामने आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। और अब तो ये कुछ भी करें इनका जवाब राम जी खुद देंगे, जो ये कर रहे हैं ना, इनका जवाब राम जी देंगे इनको।
14: मैं भी हिंदू हूँ और करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई। भावनाएं उस दिन आहत हुई जिस दिन चोरी और डकैती हुई। चोरी छोटा शब्द है और चोरी

0: from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
3: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
2: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
4: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Anusha Sonia. Quick check of the headlines. Politics over Kaveri water row. DMK hits out at Chief Minister Vijay, says he's scared to hold all-party meet. Karnataka BJP chief writes to Vijay, seeks cooperation. DKS holds an all-party meet in Karnataka. Opposition slams FIR against Rahul Gandhi over Chanda Chori skit in Parliament. BJP says Rahul hurt Hindu Aastha. Opposition asks, didn't the scam at Ram Temple hurt the sentiments of the Hindu community? A major terror probe breakthrough in Bengal. The STF claims arrested accused Hamid Mondal was linked to Pakistan-based handlers with alleged plans to target Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari and carry out sabotage at the Jantar Mantar protests. And a scuffle broke out at Pappu Yadav's Delhi residence after a shoe was hurled at him over his Chanda Chori protest. The independent MP makes big claims that the alleged attacker brandished a knife and attempted to kill him. Nasha Mukt Bharat push begins. Prime Minister launches anti-drug campaign. 100-week drive against drug abuse. Over 1 crore youth take pledge against drugs. And flood fury continues to batter Assam. The death toll has climbed to 82. More than 78 lakh people have been affected across the state. Relief and rescue operations underway. India delivers a blockbuster performance at the Commonwealth Games, clinching 16 medals in a single day. A historic boxing haul powered the surge as the country tally rose to 39 medals, with India climbing to fourth in the standings. The political battle over the parliament skit on the alleged Ram Temple donation theft is now intensifying. An FIR has been registered in Varanasi against the leader of opposition Rahul Gandhi, along with MPs Pappu Yadav and Avdhesh Prasad, over allegations of hurting religious sentiments during the protests. BJP has launched a blistering attack accusing Congress of mocking Sanatan Dharma and insulting crores of Hindu devotees. The opposition has hit back in unison. The Congress says that exposing alleged theft of devotees' donation cannot be treated as a crime, while Shiv Sena, UBT and the TMC have backed Rahul Gandhi, calling the protest justified, accusing the BJP of using FIRs to silence political opponents, saying that the actual Chanda Chori has hurt the Hindu sentiments.
5: घटिया घिनौना और आपराधिक कृत्य था. संतों का अपमान करना, राम भक्तों का अपमान करना, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो नहीं देना चाहिए, और उसके लिए देश की संसद के लिए जो चुन करके गए हैं सदस्य, उनके द्वारा और उसमें भी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश यादव और श्रीमती डिंपल यादव जैसे तमाम ऐसे सांसदों ने जो पप्पू यादव के जो एक स्वांग या ढोंग जो कह लीजिए करने का उन्होंने प्रयास किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, संतों को अपमानित करने का काम किया, राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में मैं भर्त्सना भी करता हूँ. और ऐसे मामले में FIR होनी ही चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए.
6: The repulsive drama enacted by Rahul Gandhi and his coterie in the parliament precincts have grievously demeaned the Hindu faith and has insulted the sentiments of crores of Hindu devotees. Will Rahul Gandhi and his coterie will they dare to abuse other faiths and commit blasphemy in the most debased manner in which they have humiliated Hindu faith? It is very clear that Rahul Gandhi's protest was a farcical protest, and it was deliberately intended to ridicule the and mock the Hindu Dharma.
7: जो भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव पर और बाकी नेताओं पर एफआईआर करा रही है सनातन धर्म के अपमान के लिए, वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों के की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए।
8: राहुल गांधी पप्पू यादव जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक ठीक ही था। बीजेपी का ये कायदा है, कोई जिसको विरोध कुछ करता तो एक एफआईआर लगा देता, ये एफआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल जो किया है ठीक किया है।
9: राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठाना ये अपराध है क्या? चोरी किसने की? बीजेपी के लोगों ने की। 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर में, 500 करोड़ की दानपेटियां दान पत्र चोरी हो गए, बड़े मछली छूट गई, छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया, और हमने ये मुद्दा उठाया संसद में और संसद के बाहर, तो हमारे ऊपर एफआईआर लॉज होता है? शर्म नहीं आती है लोगों को?
10: क्या कहूँ, इस पर ऐसी आती है। देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हुआ चंदा चोरी का, उस पर तो एफआईआर कराने में इन्हें इतना टाइम लगा है? और मंचन तो सब चीज़ों का होता है, उन पर किस बात की एफआईआर कर रहे हैं भाई? किस बात की एफआईआर है मुझे समझ में नहीं आया। आप चंदा चोरी हुआ है ये तो सारा का सारा सामने आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। और अब तो ये कुछ भी करें इनका जवाब राम जी खुद देंगे, जो ये कर रहे हैं ना इनका जवाब राम जी देंगे इनको।
11: मैं भी हिंदू हूँ और करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई, भावनाएं उस दिन आहत हुई जिस दिन चोरी और डकैती हुई। डकैती हुई, चोरी छोटा शब्द है, और चोरी किसके निज़ाम में हुई, डकैती किसके निज़ाम में? जिनके नाम से गाने बनवाए गए थे, जिनको बड़ा दिखाते हुए रामलला को छोटा दिखाया गया था, जो फलाने को राम को लाए हैं, आज गाना बनवाओ नया, जिन्होंने चंदा खाया है उनका क्या करेंगे? तो भावनाएं वहां आहत होती है। और मैं तो कभी कभी ताज्जुब करता हूं कि इस देश में अगर आज कबीर वापस आ जाए, उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी मजहब को नहीं छोड़ा, किसी की रूढ़िवादिता को नहीं छोड़ा, किसी के करप्शन को नहीं छोड़ा। कबीर पे यूएपीए लगता इस होम मिनिस्टर के दौर में, कबीर जेल में होते बिना ट्रायल के।
12: देखिए, ये बीजेपी के लोग सनातन धर्म को न मानते न सम्मान करते, ये बीजेपी के लोग केवल और केवल